0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।

0: زبان اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے بول کلب آزاد انتریاب. اس ہفتے کا دوسرا شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. نام ہے آزاد اور شو سنا تو ہوگا آپ نے, نہیں سنا آپ نے کوئی بات نہیں ہے, آج کل ہر کوئی سنتا ہے اپنے دل کی آواز, تو چلیے اسی حساب سے آزاد سن لیجیے. 9725019390 نمبر فور دا اسٹوڈیو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو لسننگ ٹو بول کے لب آزاد انتری. پچھلے شو کو سراہنے کا بہت سارا, کنٹریبیوشن دینے کا بہت بہت شکریہ. آج کل کے جو ہمارے سردیوں کے شوز ہیں, سردیوں میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں ہم شو کو پھیلا کے اس کو سکیڑ لیں کسی طرح, اور کوئی کام کی بات اس میں سے ہم سیکھ پائیں. اور اسی طرح وہ مہربان لوگ جو مختلف ممالک میں ہمارا شو سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن بھی اپنے دیتے ہیں, جی پیارے پیارے, ان تمام واٹس ایپ والے نمبرز آپ کو دیتے چلیں کیونکہ آسانی پیدا کریں گے آپ کو. بالکل فری میں آپ کال ان کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر 9727413883. سن سکتے ہیں آپ ہم کو ریڈیو آزاد کے ایپس کے اوپر, آپ کے اور آپ کے فرینڈز اور فیملیز کے ایپ پہ. اگر ریڈیو آزاد کا ایپ نہیں ہے, چاہے وہ اینڈرائڈ کا ایپ ہو چاہے وہ آئی فون کا ایپ ہو, تو پھر یہ جتنا بھی زور لگاتے رہتے ہیں ہم لوگ, پھر کہتے ہیں جی شو کہاں اویلیبل ہے. ریڈیو آزاد .us کی ویب سائٹ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کبھی کبھی جایا کیجئے, ویب سائٹ بنا کے خواہ مخواہ رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے استعمال کیا کیجئے سو. اور جب کسی دن ایپ خراب ہو گیا پھر آپ کو پتہ چلے, گڑبڑ ہوگی کسی دن تو پھر آپ کو پتہ چلے گا شو نہیں سنائی دے رہا, تو اس کے لیے پھر آپ کو ریڈیو آزاد .us پہ جائیں گے تو وہاں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی. یہ بھی بڑی بات, دنیا اور آسانیاں. ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر, مہربان قدردان, کون ہیں آپ؟
1: السلام علیکم آزاد جی.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام, کیسی ہیں جی؟
1: بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کرم, اللہ کرم, اور چیز بینک والوں کا تابوت.
1: کیسی ہے میری فیک ایکسائٹمنٹ؟
0: بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, فیک ایکسائٹمنٹ کے ماسٹر ہیں ہم. آج ہی ہماری بات ہوئی تھی کسی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہوئے, ہم نے کہا تھا میرا خیال ہے وہ ریکارڈ کا بٹن نہیں دبا تھا برتھ ڈے کا, تو اس میں میں نے کہا تھا اٹس اوکے, ہم ایکٹر ہیں, ہم ایکٹر ہیں, ہم دوبارہ کریں گے, وی لیٹس ہیو دیٹ فیک ایکسائٹمنٹ اوور اگین.
1: تو آزاد جی, سب سے پہلے تو میں ایکچولی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے انفارمیشن دینا چاہتی ہوں آپ کے تمام سننے والوں کو اور آپ کے کالرس کو کہ آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ December 22 کو, اور ہم ہر سال آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں, تو ان شاء اللہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دینے والے ہیں 17 کو. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے جو تمام سننے والے ہیں, کالرز ہیں, وہ اس میں ضرور آئیں, کیونکہ پھر میرا شو 24 کو ہے, تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پھر 17 رکھیے, تو ہم 17 کو آپ کو ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پلیز آپ جیسے کہتے ہیں کہ جو لسنرشپ ہے وہ بدلتی رہتی ہے, تو نیکسٹ آور میں بھی آپ پلیز اگر یہ اناؤنس کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی.
0: نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے یہ ہر سال آپ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. اس بہانے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, شوز میں کبھی کبھی نہیں کہہ پاتے, تو آپ کے شوز میں آ کے دل کھول کے بیان کرتے ہیں. اس دفعہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے لسنر سے بھی, جتنے بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے میرے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ سچی سچی باتیں بتایا بھی کریں, جو میں ڈانٹتا جو سختیاں جو ظلم میں کرتا ہوں وہ بھی کھلے کھل کے بتایا کریں, تاکہ لوگ نارمل آدمی سمجھیں ہم کو کہ بھائی دونوں کام ساتھ رکھے ہوئے ہیں ہم نے, دین دنیا ساتھ رکھے ہوئے ہیں ہم نے, تو اس طرح زیادہ اچھا لگے گا. اور چلیں, اچھا ہو گیا. یہ 17 کو ہے جی, ٹیوزڈے ہوگا
1: جی انشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ 17 کو ہے, اور سیریسلی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آزاد جی, یو ہیو ڈن سو مچ فار آل آف اس. آپ جس طرح سے ہمارے جو شوز کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی لائف میں واقعی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈالا ہے, بہت ساری آپ نے زندگیاں بدلی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ڈیزرو اٹ آزاد جی, تو وی ول بی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اور اس کے علاوہ آزاد جی, میرے دو پوائنٹ ایکچولی لاسٹ شو میں آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں نا, کہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنے تھکے ہوئے, اتنے ڈل بیمار, جیسے مطلب میں دیکھتی ہوں آزادی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کسی سے بات کرتی ہوں ان کی باڈی اتنی, یعنی لینگویج اتنی لو ہوتی ہے کہ میں اگر پازیٹیو بھی ہوتی ہوں اور میں اتنا اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں ان کو, لیکن ان دی اینڈ میں بھی پھر مر جاتی ہوں. مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے کتنا ہر چیز میں پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا ہے, تو پھر وہ کہیں سے اور مرا ہوا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. تو آزادی ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اور آپ جیسے لاسٹ شو میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا, ایک لوگ ہوتے ہیں جو جی رہے ہوتے ہیں, جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تبھی پتہ چل جاتا ہے, ان کی باڈی لینگویج سے ایک دم سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کی پریزنس سے. تو یہ کیوں؟ اور اچھا جی ایک چیز اور, کہ اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے, کسی وجہ سے غلط ہو جائے, تو وہ جو ہے بلیم, آپ کا یہ منٹ آف دا ڈے بھی آیا تھا کہ وہ بلیم جو ہے نا اچانک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مینیپولیٹو ہوتے ہیں, اور بات کو کس طرح گھما کے کرنا ہے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں جو بےچارہ سادہ بندہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
0: ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ بات کو گھماتے ہیں یا بندے گھماتے ہیں یا ٹوپیاں گھماتے ہیں, ان کو بعد میں, ان کو ان کی زندگی میں ہی پہلے تو گھما گھما کے دھوبیوں کی طرح, جیسے نہیں دھوبی پٹکے لگاتے, یہی دنیا ان کو اسی طرح گھما گھما کے دھوبی پٹکے مارے گی. اور اس کے بعد جو آخرت کا جو سسٹم ہے نا, اس میں بھی ایسے ایسے دھوبی پٹکے لگنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اور یہ آپ کی بات کہ یہ نا لوگ اتنے الزام لگانے والے بندے کا, آپ جہاں پر آپ کو بندہ ملے جو کہ صرف الزام لگا رہے ہیں, ایک یو نو ٹرائنگ ٹو پک ہولز ان ادرز, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو میں زندگی میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف دوسروں کی غلطیاں اور مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, وہ اور اس کا یا تو وہ اپنی زندگی میں وہ مسئلے اور غلطیاں نہ کر رہے ہوں, وہ بھی اگر نہیں دیکھ پا رہے, اور اس کے بعد اگر مسئلے کا کوئی بھی مسئلہ جب میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا, تو میں اس کا سلوشن ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور ساتھ کر کے دکھاتا ہوں, ساتھ چل کے دکھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سارے کام نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اس نے زندگی میں کبھی کچھ سیکھے گا نہیں, اور وہ کبھی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پائے گا. اتنے ڈرپوک ہیں لوگ, جو پچھلا والا کلپ تھا کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھانے کی خرابی بتا سکیں, اور کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی پرابلم ہے ان سے تو اس سے بات کر سکیں, اس سے شیئر کر سکیں. جتنی آپ بات کریں گی, شیئر کریں گے, اتنی آسانی پیدا ہوگی. اس سے یہ پتہ چلے گا کون ان باتوں کو غور سے سن رہا ہے, کون ان کو سمجھ رہا ہے, کون اپنے بیہیویئر کو یا اپنے کام کو ریکٹیفائی, چینجز اس کے اندر بہتری کے لیے لا رہا ہے یا نہیں لا رہا, اس حساب سے آپ کون سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے. لیکن کون اس کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکالتا ہے, یہ پچھلے کوئی تقریباً دو ایک سال سے جو لوگ میری بات ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے سے نکالتے تھے, وہ یہ بھول گئے تھے میں کس قسم کا آدمی ہوں, اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ میں شاید جو زندگی میں لوگوں کو فارغ کرتا ہوں یا بزنسز فارغ کرتا ہوں یا اپنی زندگی سے لوگوں کو نکالتا ہوں, اس میں وہ شامل نہیں ہے. تو اس میں سے 80% لوگ اس چکر میں دو سال میں نکال چکا ہوں میں, تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہر بات جو بات میں ہوش میں آنے کے بعد ہر بندے کی ہر بات کی امپورٹنس ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے. جتنی میں بات کرتا ہوں, جتنا میں خون جلاتا ہوں, جتنا میں اپنے جذبات کو الفاظ میں اور اس کے آپ کو یو نو ریئلٹی میں رکھ کے دیتا ہوں, اگر میرے ان الفاظ کی کسی بندے کے پاس بھی ویلیو نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, بہن بھائی کیوں نہ ہو, بچے کیوں نہ ہو, دوست کیوں نہ ہو, بزنس پارٹنرز کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کی سزا ہے. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے, بینک میں جب آپ پیسے ڈالیں اور آپ کو پیسے نہ ملیں واپس, اس وقت تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان آپ کی زندگی میں اپنا ٹائم, ایفرٹ, انرجی ڈال رہا ہے اور وہ واپس کچھ نہیں آ رہا, بلکہ اندھے گہرے کالے باٹم لیس پٹ کے اندر جا رہا ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے غصہ, تکلیف, پریشانی, اس کے واپس جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب کسی چیز کے ساتھ کانسیکوینسز اٹیچ نہیں ہوتے, کوئی غور سے نہیں سنتا. اسی لیے میں نے بہت نائس ہو کے دیکھ لیا, بہت اچھا بچہ بن کے دیکھ لیا, لوگوں کو پیار محبت بھی کر کے دیکھ لیا, عزت بھی دے کے دیکھ لیا, ٹائم بھی دے کے دیکھ لیجیے لیا میں نے. بعد مجھے یہ پتہ چلا اس میں 90% جو ہے وہ ابھی تک حیوانی حالت میں, بیسکلی جانور ہیں, اور وہی ان کا جو بیسک جو ماحول ہے کہ فائٹ اینڈ فلائٹ والا. اس کے علاوہ فائٹ یا فلائٹ, اس موڈ کے بندے سے محبت نہیں کی جا سکتی, دوستی نہیں کی جا سکتی, اس کے ساتھ رشتے نہیں رکھے جا سکتے, اس کے ساتھ بزنس نہیں کیا جا سکتا, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ جانور ہے, یا تو وہ بھاگ جائے گا یا وہ لڑ پڑے گا. یہ دو چیزیں نہیں چاہیے زندگی میں, نہ بھاگنے کی ضرورت ہے نہ لڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹلیکچوئل ابلٹیز کو ایکٹیویٹ کر کے پاسٹ میں کیا کیا آپ کے لیے کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کا بنتا کیا ہے, اس حساب سے ڈیل کرنا ہے ہمارے ساتھ یا ہم کو ان کے ساتھ. جب تک آپ کو یاد ہی کچھ نہیں, یاداشت ہی آپ کی کام نہیں کر رہی, آپ سب بھول گئے ہیں, आपको कितने पैसे अभी तक बना के दिए ये भूल गए, आप थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो आप रोने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है वही फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड चल रहा है, हैवानी हालत में आप, आपको याद ही नहीं है किस बंदे के साथ आप क्या बात कर रहे हैं, किस आदमी ने कहाँ आपको सपोर्ट किया, कहाँ आपको जहाँ पर कुछ नहीं कोई नहीं खड़ा होता था वहाँ खड़े हो के आज रोज़ खड़ा होना पड़ेगा क्या, उस पिछले का हिसाब किताब क्या है। जब मैंने ये चीज़ें करके देखी और ये मैंने रब से जब सीखा किताब से, तो मुझे समझ आई ये सारी बातों की, रब हमारे साथ इसीलिए जन्नत दोजख में डील करता है, अच्छाई बुराई में डील करता है, जिसका जितना बनता है उसके हिसाब से उसको देने में डील करता है। जब वो कहता है कि तुम वो जो सब इंसान बराबर नहीं है, जानने वाला ना जानने वालों के बराबर नहीं हो सकता, तो ये सारी इसी तरह देने वाला और ना देने वाला, कुछ करने वाला और कुछ ज़बानी कलामी करने वाला, कोई फिज़िकली कोई चीज़ करके देने वाला और कोई सिर्फ जज्बाती ड्रामे करने वाला, क्या ये लोग बराबर हो सकते हैं? तो जब ये नहीं हो सकते तो ज़िंदगी मेरी होगी बड़ी आसान। और हर बंदा अपनी अपनी जगह पे पहुंच गया और उसके बाद जिस जिसने जहां जहां जिनको बहुत बहुत फ़ायदे भी हुए, और करना कुछ नहीं है, एटीट्यूड चेंज करना है, कोशिश करनी है, आप जो बोलें जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करने की कोशिश करना है, कम अज़ कम इतना ज़रूर दिखे कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते इसकी सज़ाएँ होती हैं, सिंपल सी बात। मैं यही देने के पहले ज़िंदगी के 40 साल समझाता रहा, बताता रहा, करके दिखाता रहा, नाराज़ होता रहा, गुस्सा करता रहा, स्पेस देता रहा, सब करके देख लिया। अब वो सारा काम बंद, अब सिर्फ जो बोला है आपने वो करना होगा, नहीं करेंगे उसका हिसाब किताब होगा। पीरियोडिकली हर मंथ मैं चीज़ें देखता हूँ, हर क्वार्टरली 3 महीने के बाद मैं चीज़ें देखता हूँ, हर ईयरली मैं चीज़ें देखता हूँ, उसमें जो जिसका हिसाब किताब है उसके हिसाब से मैं डील करके काम को या तो रखता हूँ या नहीं रखता। क्यों करता हूँ ऐसा मैं? क्योंकि मुझे इंशाल्लाह एक दिन मर जाना है, और जो चीज़ मर जानी है, जो चीज़ ख़त्म हो जानी है, और अगर मैं ये आपको करके नहीं दिखाऊंगा तो आप सारी ज़िंदगी फजूल बातें लोगों की करके जो किताबों में आपने पढ़ी हैं और जो आपको किसी ने बता दिया है वही बातें करके आप मर जाएंगे, और मेरा भी टाइम ज़ाया कर जाएंगे, और सिर्फ बातें करेंगे लोग, मोहब्बतों की बातें, दोस्ती की बातें, इश्क की बातें, पार्टनरशिप्स की बातें, यारी की बातें। ये बातें सुनने के लिए मैं दुनिया में नहीं पैदा हुआ, मैं ये देखने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसके रिजल्ट्स भी। क्योंकि मैं अब जब आदमी एक चीज़ देख लेता है, समझ लेता है, तो उसके बाद उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। तो 2% के कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैं 10% आपको दे दूंगा या 5% पे, 40, 50, 60, 70, 80, 90% आप मर भी जाएंगे तो मैं नहीं दूंगा, ये मैं किसी और को दे दूंगा, मैं कुत्तों को डाल दूंगा, इंसानों को नहीं दूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कानून है, जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, और आपकी हर बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और उस हिसाब से डील किया जाता है। और इससे पहले मैं सोचता था कि लोग अगर आप 10, 15, 20 साल किसी के साथ चलें और अपनी तमाम डीलिंग्स वो देख भी ले तो उसको शायद शर्म आती हो, चाहे कोई हया आती हो, चाहे उसमें गैरत हो, चाहे उसमें थोड़ी बहुत समझ हो, और उसके बाद वो हमारे साथ आम लोगों की तरह डील ना करे, तो मैं गलत था। इसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, सब को एक धक्का लगा हुआ है, सबको सर्वाइवल का कीड़ा काट गया है, और किसी आदमी का कोई दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होगा, जिसने जो किया जब आप उसके साथ डील करेंगे, ना आपको प्रेशर होगा, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपको तकलीफ होगी। जिसने जो किया उसके सामने आप बैठ के कहेंगे आपको ये कहा गया था, ये आपने कहा था, ये काम आपको करना था, इतना आपने किया इतना आपका बनता है, इतना आपने नहीं किया ये आपका नहीं बनता, बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया तो आपका कुछ भी नहीं बनता। जब आप ये क्लियर कट बात करेंगे तो फिर आगे से कोई भी बोलने के काबिल नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो घबराते हैं बात करने से, वो उसके सामने जाते नहीं हैं, वो फलां बंदे से डरते हैं, वो किसी से कोई भी नहीं डरता। लोग अपने सगे माँ बाप से भी नहीं डरते, एक बात, लोग सच ये है कि खुदा से भी नहीं डरते। कार्रवाई हमने डाली हुई है, अगर डरते तो वो उसने जो 4-5 चीज़ें बोली हैं वो हम कभी भी ना करते, तो इसका मतलब है हम रब से भी नहीं डरते। तो बंदे से डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो थोड़ी देर के लिए वक्ती डर इसलिए होता है कि हमको अपना काम नहीं किया हमने, लेकिन हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, यानी हमने पैसे दें, नौकरी, हमने नौकरी नहीं करनी, मौकरी करनी है, म्यूटनी करनी है, मछले करने हैं, ड्रामे करने हैं, लेकिन अब आप हमें मंथ के एंड पे पैसे दे दें आप, तो इस तरह कोई कंपनी भी आपके साथ नहीं चलेगी। जब ये कंपनी करती है तो उस वक्त कोई नहीं बोलता, क्योंकि कंपनी को वो इंसान नहीं समझते। कंपनी हालांकि सेपरेट एंटिटी है, वो इंसान ही की तरह ऑपरेट करती है, लेकिन उसका मकसद होता है, मिशन स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होती है। इंसान जज्बात की वजह से रोज़ नए ड्रामे के अंदर फंस जाता है, रोज़ नई चीज़ में किसी चक्कर में आ जाता है, तो इसीलिए लोग उसके साथ ये गेम खेल जाते हैं। शहर में इस दुनिया में बहुत सारे लोग मुझको मिलते हैं, डैलस में भी, लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी, 3-4 और मुल्कों में जिनमें मैं काम करता हूँ, मुझको लोग मिलते हैं और वो जो कहते हैं जी फलां बंदा बड़ा तेज़ है, फलां बंदे से बच के रहिएगा, फलां मर्द से बच के रहिएगा, फलां औरत से बच के रहिएगा, फलां कंपनी से बच के रहिएगा। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ मैं क्यों किसी से बच के रहूँ, मेरे कुछ उसूल हैं, वो 3-4 सिंपल से उसूल हैं। इन जब से मैंने पिछले 20 साल से इन चीज़ों पर अमल किया, किसी ने मुझे कोई धोखा नहीं दे सका। और वो सिंपल उसूल क्या है, मैंने आपकी गेम में खेलनी नहीं है, मुझे ना आपसे कुछ चाहिए, ना कुछ मामला करना है, ना मुझे आपके साथ पेपर का ऐसे साइन करने हैं, ना मुझे आपके साथ शेयर्स चाहिए, ना मुझे आपके बड़े बड़े ड्रामों में आना है। मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उस सर्विस को किसी को देने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और सादा हैं। इस पे जब आप डील करेंगे, ना आप मुझे कभी पकड़ पाएंगे, ना मैं आपको पकड़ पाऊंगा, क्योंकि पकड़ धकड़ का टाइम ही नहीं है हमारे पास। एक चीज़ आपको दी है, उसके बदले आपने कुछ देना है, सिंपल। एक सर्विस आपको दी है, उसके बदले आपने कुछ देना है। इस चीज़ को लिखना है तो लिख लो, इसके अलावा और किसी ड्रामेबाजी का मैं हिस्सा बनता ही नहीं हूँ। तो चलाक लोग, गेमर लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो आप उनके साथ कुछ गेम के अंदर आएंगे तो वो आपके साथ गेम करेंगे ना। तो गेम इतनी आप शादी कर देंगे तो कोई आपको ना धोखा देगा ना आप, यू विल एंड अप इन द कोर्ट्स। और अगर होता भी है तो आपको क्या चाहिए, आपको ले ले जान छोड़े। तो बिल्कुल इसी तरह आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, कि ज़िंदगी में चलाकियां करने से, तेज़ियां करने से, जैसे आपने कहा कि मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, कोई वैल्यू नहीं उन बेचारों की। ये सारी चलाकियां धरी की धरी रह जाएंगी, ये सारी ठगियां, ड्रामे, ये सब का सब जो औरतें अपने शौहरों के साथ करती हैं, एंड में उनका वही हाल होना है जो उनका होना चाहिए। जो शौहर अपनी बीवियों के साथ, औलाद के साथ करते हैं, उनका वही हाल होगा जो उनका हाल होना चाहिए। मैं देख चुका, रोज़ देखता हूँ, और रोज़ मैं ये चीज़ें डील करता हूँ इन लोगों के साथ और इस मामलात में। तो आप किसी चीज़ का चक्कर नहीं दे सकते, आप बड़े लंबे अरसे के लिए कोई झूठ को लंबा चला नहीं सकते, आप कोई बड़ी गेम बना नहीं सकते, आप नेकी के ड्रामे कर नहीं सकते। या आप होते हैं या नहीं होते, या आप ऑनेस्ट होते हैं या नहीं होते, या आप चोर होते हैं या नहीं होते। और अगर आपसे कोई गलतियाँ हो गई हैं तो फिर आप उनको रेक्टिफाई करते हैं, उसकी पादाश में कफ़ारा अदा करते हैं, अपनी सज़ा लेते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ें किसी बंदे से इम्प्रेस होने की, या किसी को देख के डिप्रेस होने की, या किसी के साथ कंपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी लोगों की औकात ही नहीं बेचारों की। लोग अगर ये जिन लोगों की तरह लोग बनने की कोशिश करते हैं ना, आप यकीन करें, जब आप इनको जान जाएंगे ना, इनके असल हालात, इनकी सोच जान जाएंगे, इनको जब आप खाता हुआ देखेंगे, इनको जब आप अपने रिश्तों में डील करता हुआ देखेंगे, इनको जब अपने मामलात और रब के साथ जो मामलात हैं उसमें डील करता हुआ देखेंगे ना, तो एक ही इमोशन आपके अंदर से निकलेगा, तरस आएगा लोगों के ऊपर आपको। तरस के अलावा 99% लोगों के ऊपर कोई और इमोशन ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं। और वो जो 1% और 2% लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं, जिनको देख के आप खुश होते हैं, जिनको देख के आप में एनर्जी पैदा होती है, जिनको देख के, सुन के, उनसे बात करके, उनसे मिल के, उनसे हाथ मिला के आपको मोटिवेशन आती है, गुड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, आपको ज़िंदा ज़िंदा सा फील होता है अपना आप, आपकी थकावट उतरती है, आप खुश रहते हैं, ये वो इंसान है जो दुनिया में भी सरमाया है इंसानियत का, और बाकी जो मामलात हैं हमारे उसमें भी सरमाए के तौर पे काम करते हैं। तो जब तक आप देखें फजूल चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय ना, आप जब अपने आप पर, अपने काम पे ध्यान देंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप नहीं जानते, दुनिया बड़ी ऐसी है, दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी मैनिपुलेटिव है, दुनिया बड़ी पागल है, दुनिया ऐसे करती है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, वो दुनिया मुझे भी नहीं जानती फिर। क्लियर, सिंपल समझने की बात यह है कि मुझे ऐसी मैनिपुलेटिव, ड्रामेबाज, चलाक, गेमर दुनिया को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ में डील ही नहीं करता। तो जब मैं एक चीज़ में डील ही नहीं करता तो मुझे उस बारे में क्यों सोचना है? मैं क्यों ये सोचूं कि स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पागल हुई जा रही है, जब मैं स्टॉक मार्केट में हुई नहीं, जब मैं दो नंबर के धंधे में हुई नहीं, तो दो नंबर लोग क्या कर रहे हैं? व्हाई वुड आई बी वरीड अबाउट इट? दो नंबर लोग क्या कर सकते हैं मेरा, मैं क्यों टेंशन लूँ उनकी? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना, मैं उस मामले में हूँ। मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को डील सही करके रखूँगा, ताकि जब भी दो नंबरी का और ये गेम हमारे साथ टकराए तो उसको पता लग जाए देयर इज़ नथिंग मच टू डू। तो इन चीज़ों को ऐसे देखना और सोचना और समझना जब आप शुरू करेंगे ना, तो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ये दुनिया कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बंदा कुछ बिगाड़ सकता है, वो आप खुद हैं। और दूसरा जो आपका बिगाड़ सकता है वो आपका बिगाड़ना नहीं चाहता, वो रब की ज़ात है, वो कोई चीज़ नहीं बिगाड़ेगी। आपकी जब सेहत ख़राब होती है तो वो नहीं बिगाड़ रहा आपकी सेहत, हम चीज़ों को डिफरेंटली डील करते हैं। दुनिया में अगर हैं तो बीमारी भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हमको पकड़ सकता है, तो उस दुनिया में होने की वजह से हमारी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा जो नुकसान हम खुद कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे फाइनेंशियल नुकसान, तो रब आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं करना चाहता। वो भी सिचुएशन में अंदर कभी नुकसान होता है, कभी नहीं होती, तो वो कोई एक्चुअली ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है। इसके बीच के इम्तिहान स्पेशली मुझ पर या आप पर नहीं डाले जाते, ये हम जिस इलाके में जिस इन्वायरमेंट में होते हैं उसी हिसाब से इम्तिहान होते हैं। एक इन्वायरमेंट में सबको चिकन पॉक्स हो रहा है, वहाँ पे आपको बेरी बेरी वाली दूसरी बीमारी ताउन नहीं हो सकती, क्योंकि सबको एक हो रही है तो वही हो रही होगी सबको, उस एनवायरनमेंट में उस एरिया में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हम पे ऑपरेट होती हैं। तो अगर हम इनको चीज़ों को इस तरह देखेंगे तो आप खुदा को भी इस मुक्त करें इस बात से कि उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया, या लोगों ने भी आपके साथ, आपको अच्छे बड़े बड़े लोग दिखाते हैं सब्ज़ बाग, हम मुंह उठा के वो सब्ज़ बाग ख़रीद लेते हैं, बड़े वजह से इस बैंक ये पैसा आपको इतने देंगे तो आपको इतने परसेंट मिलेगा, कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं वो कंपनी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे। आपने वो झूठ ख़रीदा, उन्होंने झूठ बेचा, आपने झूठ ख़रीदा, उस झूठ की सज़ा में आपको नुकसान हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप झूठ का धंधा करेंगे ही नहीं, या आप झूठों से कारोबार ही नहीं करेंगे, झूठे और झूठे आपको अच्छा समझें, आपसे प्यार करें, आपकी तारीफ़ें करें, जब आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो कोई बंदा आपको इस तरह धोखा भी नहीं दे पाएगा। तरस गए हम पिछले 10 साल से किसी धोखे को, और जो अगर और जिनको लगता भी है उन्होंने हमें धोखा दिया किसी बात में वो भी झल्लें, उनको नहीं पता हमें पहले से पता था, इसीलिए इतना बड़ा डैमेज नहीं कर पाया। तो ये बातें इंसान जब इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसको ये सब पता होता है। बेवकूफ़ इंसान जो होता है, अपने आप को धोखा देने वाला इंसान, खुद से झूठ बोलने वाला इंसान, रेड फ्लैग्स ना देख सकने वाला इंसान, रियलिटी में ना रहने वाला इंसान, अपने लिए भी मुसीबत है, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। मेहरबान, रेडियो आजाद जी। अस्सलाम
1: वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जिस कॉइन में सलाम किया हमने उसी कॉइन में आपको जवाब दिया कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: कौन सा कॉइन चल रहा है? डॉलर्स में बात करती हैं कि आप पाउंड्स में?
1: पाउंड्स में।
0: ओ तेरी, क्योंकि पाउंड महंगा है इसलिए। अच्छा, मुझे याद ही नहीं रहता, हमें जो डॉलर मिल रहे हैं हमारा ध्यान इसके ऊपर है।
1: आप किसी भी कॉइन में बात कर लें आजाद अल्लाह, बस आपकी बात तो बात ही अलग है उसकी।
0: हम आपकी बात को कॉइन ही करके ना कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे।
1: तो अजादला भी जब अफशा बीबी जैसे आती हैं, यूं लगता है जैसे बस एनर्जी छा गई हो पूरी जगह से, माशाल्लाह से।
0: उसके बाद वो बेचारे भी, हाँ उसके बाद उन्होंने भी कहा बीच में, मैं 5-10 मिनट से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा सांस 5-10 मिनट क्या, मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सांस कब लेंगे बीच में, मैं पानी पी लेता हूँ इसी बहाने।
1: अजादला, हम इनको अफशा कहते हैं, और ये अफशा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अजादला हमारे साथ, हमारी कॉलीग होती थी वो इरेनियन थी, तो उनको हम, उनका नाम अफशा था, हम उनको अफशा बुलाते थे, तो वो बहुत माइंड करती, कहती ये अफशा नहीं है, कहते अफशान है ये।
0: इनको आप अफशा ही कह लें काफी है, क्योंकि और ज्यादा ना वो जॉन कहने वाले, और ये ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना, ये कई लोग जो होते हैं, आपको एक और कॉम्प्लेक्स बताऊं मैं, जिन लोगों को आप अंकल या आंटियां कहते हैं ना, उनकी जान और रूह निकल जाती है ना, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी एज को लेके, ठीक है, बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसी तरह जिन लोगों का नाम होता है ना, कोई भी एक नाम। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद।
2: دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: On the authority of Abu Sayyid al-Khuzri, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, 'If anybody amongst you notices something evil, he should correct it with his hands. And if he is unable to do so, he should correct it with his tongue. And if he is unable even to do this, he should at least consider it bad in his heart. For this is the lowest degree of faith.'"
7: حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکے, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے.
8: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
9: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment, or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
10: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
11: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
12: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Kisi ka naam Durre Fashan hai, farz karo. Theek hai. Ab aap kisi ko usko Durre Fashan nahi kahenge, to wo kuch aur kahenge, to wo usko aapko correct karenge. And by the way, this is not Durre Fashan, this is Durre Fashan. ठीक है, या वो कहेंगे ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बताते हैं. इन लोगों को अपने बारे में और अपने नाम के बारे में बहुत जोम है कोई शायद. इट्स जस्ट नेम, क्या फ़र्क पड़ता है? अगले बंदा किसी और एक्सेंट का मालिक है, किसी और ज़बान में वो आपसे कह रहा है, जो भी वो कह रहा है. या तो उसके लिए आसान सा कोई आपका लास्ट नेम आसान है वो बता दें उनको, खान खान कह देंगे, ख़त्म होगी बात. लंबे नाम, लंबी चीज़ अगर है तो वो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नाम प्रॉपर लें. इससे पता चलता है कि आप फिनकी आदमी हैं, इससे पता चलता है आप कुछ चीज़ों में बहुत रिजिड हैं, इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना मैटर कर रही हैं. क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपका हमारा नाम कैसे लेता है, नहीं लेता? आपने शादी करनी है, बच्चे करने हैं उनसे.
1: बिल्कुल सही है ज़्यादा. हम तो उसको वही अफशा ही बुलाते थे, आपका नाम अफशा ही है.
0: अगर वो कह रही थी फशां कर लें, फिर भी ठीक है, चले उसको सामने फशां कर लें. लेकिन जो भी है, ये तो करीबी कुछ लोग होते हैं, बट उनको आदमी ये बताता है, टेक इट इजी, इट्स जस्ट अ नेम. आप अपना नाम नहीं हो, आप अपना काम हो, अपना अमल हो. लोग आपसे खुद पूछेंगे, आपका नाम बड़ा प्यारा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जो लोग जिन्हें जो खुद आपसे इज्जत प्यार करेंगे ना, वो पूछेंगे आपका ये नाम है, इसका मतलब क्या है, फलां है वो. जब तक उस लेवल पे लोग आएंगे, फिर ये बंदा बात करता है उनसे. वरना नाम लिया उन्होंने, नहीं लिया, एक आम आदमी आपका नाम कैसे लेता है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने देखा है, ये तो अभी आपने पॉइंट ऐसा दिया है, तो मुझे ये ख्याल आ गया कि इसके पीछे पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके पीछे आपका पूरा बिहेवियर है. अगर आप इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को हम इस तरह डील करते हैं, तो हम बड़ी चीज़ों में कितनी मुसीबत होंगे, अगर हम छोटी बात को नहीं जाने देते.
1: बिल्कुल सही है. और लोग पता नहीं अजाला उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंट होना इतना अच्छा लगता है.
0: बिकॉज और कुछ भी तो नहीं है ना उनके अंदर, कख नहीं है उनके अंदर. क्या करें वो बेचारे, उनकी साइड से भी सोचें, एम्पथी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं. चल में थोड़ा थोड़ा सा ना वेलवेट टच करते हैं, ठीक है? वो वेलवेट टच में उनको ये, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है. किसी के पास पुराना फैमिली का एक नाम है, जो फैमिली अच्छी थी, जैसे मुसलमानों के पास कख नहीं है, कख नहीं है इनके पास. पिछले 400-500 सालों में उन्होंने कख नहीं किया. वो पिछली हिस्ट्री को हमने ज़ीरो ईजाद किया था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है बाबे हो? ज़ीरो आपने ईजाद किया था, अच्छा गुड, ले लो इसके 5 रुपए, बाकी इसको इस्तेमाल करके अगले चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन आपको दे दे हम सारा? इसके कोई रॉयल्टी थी ज़ीरो की क्या? इसी तरह कि हम पुराने ज़माने में माबेरे अबाव अजदाद ऐसे थे, इस पे तो शर्म करनी चाहिए हमको. अगर वो इतने कमाल थे, हम कहाँ हैं? हम तो उनके नाम लेने के काबिल भी नहीं हैं. तो इस तरह कोई नहीं सोचता, खाम खा बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते हैं. पुराने ज़माने में हमारी हुकूमतें थी, अब तो आपके पास अभी भी 57 कंट्रीज़ में आपकी हुकूमतें हैं. एक छोटा सा डिसीजन आप नहीं ले सकते. एक मुल्क जो दुनिया में ऐसे खाम खा जो है वो चौधरी बना फिर रहा है छोटा सा, और वो सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको पकड़ नहीं सकते आप, उसको आप सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते. आप मुल्क आपस में मिल के उनको आप कुछ नहीं कर सकते. वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पूरी दुनिया वीडियो देख रही है, तस्वीरें देख रहे हैं. बस क्या इस्लाम खेल रहे हैं हम लोग? खाम खा मजाक बनाए हुए हम लोगों ने, कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले. तो जाहिर बात है, जो होता है उसको लेके चूसते रहते हैं. वो जो नहीं होती है कैंडी पकड़ के एक छोटा सा बच्चा करता रहता है और कहता है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है. तो क्या कैंडी खाने से प्रोटीन्स पूरे हो जाएंगे, फैट्स पूरे हो जाएंगे, बेसिक आपके कार्ब्स पूरे हो जाएंगे, एनर्जी बेसिक आ जाएगी आपको? नहीं, बस आप सिर्फ दुनिया में चीज़ को पकड़ के उसको करते रहना सिर्फ. इससे तो हमारा दोस्त अच्छा था जिसने देखा, वो याद है आपको मैंने किस्सा सुनाया था?
1: दोबारा मुझे
0: वो मैंने तो अच्छा आपको मैंने सिर्फ सुनाया है, तो आपके जहन से वो इमेज नहीं जाता, मैंने तो देखा है.
1: मुझे लगता है उस स्टोरी के बाद मुझे ट्रॉमा हो गया.
0: हाँ जी, और उसने तो ऐसे वापस जाते हुए टेबल को टच करते ही उठाई और किया. और ये बात मैं अब उसकी, इतना वो मोटे हो गए हैं, गंजे हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने दाढ़ी रख ली है, इतने आपको बड़ा बंदा हो गया, लेकिन उसकी शक्ल देखते हुए मुझे वही बात याद आती है 30 साल से.
1: और उनको पता है कि ये सब कुछ आप यानी उनको किस्से का पता है कि नहीं?
0: नहीं, वो बेचारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने क्या कमाया था, क्या बोला था, उनकी क्या कमिटमेंट थी स्कूल, उनको अकेडमी के जमाने की कख बातें नहीं याद, आप उनको याद भी कराएंगे उनको? उनको ये पता है मेरे पास प्लॉट कितने हैं, और एक प्लॉट अगर है तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, तो कैसे मैं करूँगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर में ये जो मसला चल रहा है उसको मैंने कैसे, इससे बाहर निकलेंगे तो ये सारी बातें वो करेंगे। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो ऑब्जर्वेशन रखते थे, इन्जॉय करते थे लाइफ को, चीज़ों को देख रहे थे, फ़न कर रहे थे, और अपने मसले शसले जब ख़त्म आते हैं ना, पिछली डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा कहा था एयरपोर्ट पे जब वो जाती हैं तो वो लोगों को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं सारा कुछ कि कौन कहाँ जा रहा होगा, ये खुश हैं, किसको मिल रहे होंगे, क्या होगा, इनकी क्या ज़िंदगी होगी। तो उनको मैंने क्या जवाब दिया था, ये वो लोग, ये लग्जरी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दोज हु आर पुट टुगेदर, जिनके टाइम के ऊपर अपनी चीज़ें ठीक होती हैं, जिनके फाइनेंसिस के मसले नहीं। आम बंदा तो एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको लगता है बस उसने कोई अमेरिका फतह करना है, वहाँ से उसने सामान को टकराता हुआ जाता हुआ, इससे मिलता हुआ, उससे मिलता हुआ, घुड़ी उतारता हुआ, पहनता हुआ, फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हुआ, उसकी बैटरी डाउन हो रही है, वो ऊबर के चक्करों में पड़ा हुआ, आर पार देखता हुआ, तीन सार से टकराएगा, दो से सॉरी करेगा, एक के ऊपर चढ़ जाएगा, उसका पाँव चढ़ा देगा, ये आम बंदा होता है, या उसका बैग किसी के पाँव के ऊपर से गुजर जाएगा जैसे पीछे उसके कोई लगा हुआ है। तो ये है वो चीज़ें, आम आदमी बेचारा तो उसके पैसे नहीं पूरे हो रहे, वो अगर अब वो ऊबर ले या बस ले या वहाँ से वो ट्रेन ले, उसके पास पैसे ही नहीं है, बेसिक खर्चे ही कभी उसने सीधे नहीं किए, लेकिन है वो बहुत अच्छा आदमी, उसका नाम अलेक्जेंडर है, उसका नाम अलेक्जेंडर डुमो है।
1: नहीं आजादा ने वैसे ही बहुत मजे की चीज होती है कि आप एयरपोर्ट पे लोगों को ऑब्जर्व करें, या स्पेशली हॉस्पिटल में जो वेटिंग रूम होते हैं उसमें हो गया, या शॉपिंग मॉल पे जब लाइक शॉपिंग ना करें बस बैठ जाएं, जस्ट देखें कि लोग क्या कर रहे हैं।
0: लेकिन
1: क्या
0: ये वही कर सकता है ना जिसका दिमाग एक्टिवेटेड है, जिसको इंसानों में इंटरेस्ट है, जिसको ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्ट है, जिसकी इमेजिनेशन किसी किस्म की होगी, जिसके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, जो बीवी जिसने अभी बेगम से गर्लफ्रेंड से झूठ बोला हुआ है वो अभी फड़ा जाएगा, उसने चीज़ें कवर करनी, उसका दिमाग के अंदर कैपेसिटी नहीं है इन तमाम चीज़ों की, वो अपने जो टोपियां वो घुमाते हैं, लेडी हैं या जेंटलमैन है, तो वो टोपी घुमाने के चक्कर में बेचारे सोचते रहेंगे, तो उन बेचारों के लिए तो ये लग्जरी है ना।
1: आजादा ने मुझे आपसे ये बात पूछनी, जब लोग आपने कोई क्रिएटिव चीज देखते हैं, जैसे उनको पता है कि आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तो फौरन बस वो ये बात आपसे करते हैं कि इसको बिजनेस बना ले, इससे पैसा कमा ले, व्हाई इज इट लाइक दिस? क्योंकि इंसान जस्ट क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर चीज को बस पैसा कमाना होता है।
0: आपने आपने एक चीज देखी होगी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि आप एक काम करें
1: जी।
0: नहीं ठीक है, ये दो किस्म की, ये बड़ी कमाल ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और इतने लोगों का इतना दिमाग ही नहीं होता कि इन चीज़ों को ऐसे सोचें और इसको ना क्वेश्चन बनाकर यू नो इससे विजडम कशीद करें। आप ऑब्जर्व करेंगी जिस जो भी क्रिएटिव आदमी को ये आइडिया देता है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको मोनेटाइज करेंगे या इसको पैसे इसके ऊपर बनाएं, तो आप ये देखेंगे कि उस बंदे के अपने पास ये क्रिएटिव एबिलिटी नहीं, ऐसा ही होता है ज़्यादातर
1: जी, बिल्कुल।
0: उसके पास वो दूसरा काइंड ऑफ ब्रेन है जो पैसे बनाता है और वो पैसों के बारे में सोचता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्रिएटिव आदमी को रब ने, ज्यादातर लोग जो क्रिएटिव होते हैं वो क्योंकि नेचुरल एबिलिटी उनको रब ने दी होती है, तो उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो इनेट उनकी नेचर का एक हिस्सा है। क्लियर? ये करने से ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को अपनी नेचर का हिस्सा आपको साथ आराम से आसानी से मिल जाती है तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो जिनको ये फाइनेंशियल साइड या ये पैसा बनाने का और ये वाली साइड जो जिनकी एबिलिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं और ये रब ने इसलिए बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग कि जब ये आपस में मिल जाएंगे तो उससे कोई क्रिएटिव काम मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे बने, उससे लोगों को नौकरियां मिली, वो यानी उससे आपका बाद में वही चीज़ पे आपका फोकस हो जाता है, लोग अपने अपने जॉब जिसमें वो थक जाते हैं, अक जाते हैं, वो छोड़कर इस काम में आ जाते हैं और फिर इस काम से पैसे भी बनते हैं, आपका यू नो पैशन भी होता है, फिर इस काम से बहुत सारे और लोगों को आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना एक करना चाहे तो ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्रिएटिव साइड को ही वो खुश होते रहते हैं कि वो एक क्रिएटिव चीज़ है उनकी, और दूसरे जो हैं वो उस पर मोनेटाइज करते हैं और इससे एक बिज़नेस भी बन सकते हैं। अब ये दो किस्म डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब क्रिएटिव लोग जो ज़्यादा होते हैं उनको क्योंकि आसानी से मिलती है, तो वो ज़्यादातर ये रब की तरफ से है कि ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो अपनी किसी भी क्रिएटिव चीज़ को वैसे ही लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होना रब की तरफ से एक रब का वस्फ है जो इंसान के अंदर आया, तो उस क्रिएटिविटी का इट डिमांड्स एक्चुअली दैट आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। उसका कुछ सच है, कोई ट्रूथ की बात है, कोई क्रिएटिव काम है, तो आप उसका हक है कि आप उसको रब की तरफ से आए आप उसको लोगों के साथ शेयर करें। अब इस पे पैसे को बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता ये उसकी अपनी नेचर का हिस्सा है। लेकिन कई लोग हर चीज़ को, ये दो किस्म के लोग हो गए मैंने आपको बताया, ये दोनों मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं, और फिर आप अलहदा अलहदा अगर इनको सोचें तो एक बंदा हो सकता है उसको सोशल बिजनेस बनाना चाहे, हो सकता है उसको कमर्शियल बनाना चाहे, हो सकता है उसको बिजनेस बनाना ही ना चाहे, प्रोबोनो बस लोगों के साथ शेयर करके खुश हो जाता है, ये एक बंदा है। दूसरी तरफ जो बंदा है जो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है, उसका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, वो कोई सोशल बिजनेस नहीं करना चाहता, अगर वो कोई उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकालना चाहता, उसकी कोई ज़कात नहीं निकालना चाहता, उसको कोई किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ मनी माइंडेड आदमी है, तो वो इसी तरह सोचता है हर चीज़ के बारे में। अब एक और, ये आपको तीन डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए, अब एक चौथा सिनेरियो है। चौथे सिनेरियो में एक आदमी जो क्रिएटिव है और उसको और कोई काम नहीं करता, मोस्टली क्रिएटिव यू नो बाय नेचर लेजी होते, तो अगर वो कोई काम नहीं कर पाता तो इस काम की वजह से अगर वो अपना रोज़ी रोटी चलाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई और काम करता है, इस काम को वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो ये ज़रूर कर ले। लेकिन जो दूसरी तरफ, ये चार सिचुएशंस हो गई, ठीक है, पांचवी सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि जो दुनिया ऐसी बन गई है कि हर चीज़ इट ऑलवेज बॉयल्स डाउन टू द मनी। कई घर, जब वो बंदा अमीर होता है तो कोई बंदे को उसकी खराबियां नज़र नहीं आ, ना उसके दोस्तों को ना उसकी फैमिली को खराबियां नज़र आती हैं। जैसे ही वो बंदा गरीब होने लगता है, मेरे कई दोस्तों के साथ ये हो रहा है, उसके साथ आपकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, लोग उसके साथ रिश्ते भी तोड़ना चाहते हैं, लोग दुश्मनियाँ भी डाल लेते हैं, क्योंकि अब वो किसी जोगा नहीं रहा। इन चीज़ों को सामने रखते हुए इंसान ने ये सोचा कि पैसा ही अगर सब कुछ है तो क्यों ना सिर्फ पैसा कमाएं, क्योंकि पैसे वाले के रिश्ते भी नहीं टूटते, उससे लोग नाराज़ भी नहीं होते, उसके लोग साथ चलते हैं, वो अगर बदतमीज़ बद नाहिंजार बुरा आदमी भी हो, बूढ़ा भी हो जाए तो भी लोग उसको रिश्ता देना चाहते हैं, उसके साथ लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी पार्टीज़ रखना चाहते हैं कि उनके इन दिनों में वो आ सकते हैं कि नहीं, ये सब कुछ वो करना चाहते हैं। तो फिर इंसान ने सोचा, और फिर वो चॉकलेट फिल्म की जो लाइन थी जो मैं कभी नहीं भूलता, इरफान खान साहब की आवाज़ में डिलीवर हुई थी, और उन्होंने कहा था कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। ये इसलिए कहा था कि दुनिया ने ये आलम कर दिया है कि सिर्फ पैसा ही, और ये अभी से नहीं है, ये कारून के ज़माने से ऐसा था, जिनके खजानों की कुंजियां जो थी ना ऊँट लेकर फिरा करते थे, तो और ये पैसा जिसको चढ़ जाता है ना, जिसके दिमाग में इसका असर हो जाता है ना, उसके दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। इन्हीं ताकत और पावर, पैसा से ही पावर है, पैसे से ही कुर्सी है, तो इसी से लोग फिरौन बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं, नमरूद बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं, और जब ऐसा वक्त आता है कि जब इनका इक्तदार या इनकी पावर जाने लगती है, तब भी आम आदमी सोचता है यार इनको इतनी अक्ल नहीं थी, नहीं, क्योंकि मत मार देता है पैसा और पावर इंसान की। और इस बात का सबूत क्या है, इस बात का सबूत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़माने में ना, अभी मूसा अलैहिस्सलाम कब एग्जिस्ट करते थे, तकरीबन 3000 साल पुरानी, उससे भी पहले की बात, ठीक है, तो 3000 साल पहले भी जब वो अच्छा काम या नेक काम करना चाहते थे तो इन्होंने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाया, एक औरत पकड़ ली और उनको कहा जी आप ये बोले कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। तो इतने थके हुए लोग हैं, ये इनोवेटिव तो है नहीं, ये आज भी यही हरकतें करते हैं, किसी बंदे पे कोई औरत या कोई कुछ मतलब बंदी या कोई बच्चा या कुछ ऐसी चीज़ डाल के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक महफिल के अंदर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये किया है, तो उनको इतना, वो बहुत जलाली गुस्से वाले आदमी थे, तो वो जब उनकी जलाली तबीयत में जो उनको गुस्सा जब चढ़ा, तो और ये कारून लोगों ने ये मिलकर ड्रामा किया था, तो उन्होंने उसको कहा, उतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा, ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर निगल ले। तो वो कहते हैं कि वो जब ज़मीन में धंस रहा था उस वक्त भी उसने नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो या मुझे माफ़ करो या कुछ और, उसके पता है अल्फाज क्या थे? वो कह रहे हैं आप मुझे इसलिए ज़मीन में घुसा रहे हैं कि मेरा सारा माल जो है आप हथियाना चाहते हैं। तो अब गुस्से वाले जलाली मूड में बंदा हो और पैगंबर हो रब का और कलीमुल्लाह हो, रब से बात की उसने, तो उनकी जलाल जो सेकंड, गलत बात नहीं करनी होती जब बंदा को सख्ती में हो तो उसके साथ उल्टी सीधी बात नहीं करनी होती, स्पेशली अगर वो हमेशा राइट पे हो। ठीक, तो बजाय उसके उधर ये एक तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उनको सख्ती उन्होंने की तो उन्होंने कहा सजा दी, अब वो रास्ते सजा के अंदर ही दूसरा गलत जुमला बोला तो आगे पता फिर क्या डिसीजन आया?
1: क्या?
0: जमीन को हुक्म दिया कि इसको इसके खजानों समेत जमीन में दफन कर दो, तो सारे का सारा सब कुछ दफन हो गया। तो इसीलिए लोगों को नहीं समझ आती कि, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जब आप नीच सोच के मालिक होते हैं ना तो आला सोच का बंदा आपकी या बंदी आपकी औकात से बहुत ऊपर होता है। अब आपसे क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है या होती हैं तो आप क्या करते हैं, खुद तो आप ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी सोच समझ के आना पड़ता है, एक पूरा जर्नी होता है, रब की मेहरबानी होती है, उनके किए हुए अमल होते हैं, उन लोगों की दुआएँ होती हैं, ये सब मिल के उसको बड़ा इंसान या बड़े बंदी बनाते हैं। अब आप ये सब तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी नीच नीच गेम खेली है, तो अब आप क्या करते हैं उस आदमी को अपने लेवल पर ले कर आके उसके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, उसको नीच, उस पर इल्ज़ाम लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको घटिया और नीच साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेरे लेवल पे आए, मैं उससे लड़ूं। अब इस बात को यहाँ से उठाएं और रब पे ले जाएं। ये जितने लोग रब की मैग्नैनिमिटी को, रब के जो ऑल नोइंग होने को और उसके कमाल होने को जब नहीं समझ पाते और उसको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं तो ये क्या अपनी सोच को जब खोल नहीं पाते तो ये इतने नीच सोच के साथ चले जाते हैं कि ये रब को इतना छोटा कर लेते हैं कि जो इनके जहन के मुताबिक सिर्फ इनसे प्यार करता है और सिर्फ इनके मज़हब को और इनको जो है वो अप्रिशिएट करता है और इनका ये और बाकी किसी का नहीं है, तो ये क्या करते हैं उस रब की ज़ात को भी अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक छोटा करते हैं पहले और फिर उसके साथ डील करते हैं। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स। मेक सेंस? ये करता हुआ आप देखती हैं लोगों को?
1: बहुत ज़्यादा।
0: लेकिन इस तरह हम सोचते नहीं हैं कि ये इस तरह साइकोलॉजी काम करती है, इस तरह नीचपन इंसान का काम करता है, इस तरह जो हैवानी हालत में इंसान होता है अपने सर्वाइवल के लिए, किसी का बच्चा भी खा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, और दूसरी तरफ जब इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसकी सोच बड़ी हो जाती है, तो वो लोगों की जान बचाने के लिए जिन बच्चों को वो जानता भी नहीं अपनी जान दे देता है, जिन लोगों को वो नहीं जानता उनको बचाने के चक्कर में भी अपनी जान दे देता है इंसान, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग के अंदर इंसान होना जो है वो बहुत आला अरफा होता है बजाय इसके कि आदमी होना जिसने अपनी जान बचानी। ये फ़र्क होता है दोनों के बीच। और कोई भी हमारे इर्द गिर्द ऐसा इंसान हमको मिल जाए जिसके अंदर ये छोटी मोटी भी इस किस्म की जो है ना निशानियाँ हों, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, तो हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि हम उनकी प्रेजेंस में हैं, या हम उनको जानते हैं, या हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, या हम उनकी प्रेजेंस में हैं। ये इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे ज़र्फ बढ़ता है आपका, अच्छे लोगों से, अच्छी बात से, अच्छी समझ से, और ये करने से, सोचने से, दिल को बड़ा करने से, दुनिया की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपने आप को ग्रैंड समझने के बजाय उसमें अपना छोटा रोल समझना, छोटा सा रोल समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ज़र्रे के बराबर है। बट उस ज़र्रे के अंदर जब आप जाएंगे और उसको जब आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत बड़ा कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, और स्पेशली इस ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, फाइबर ऑप्टिक्स के ज़माने में, जहाँ पे आप दुनिया के कम्युनिकेट कर सकते हैं, दुनिया के साथ बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं उन मुल्कों में जिनको आप ना कभी जानते थे ना मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस ज़माने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई चीज़ डॉक्टर साहब, अभी तो है आपके जहन में एक आध सवाल?
1: नहीं आजाद, दो और क्वेश्चन है, एक और।
0: दो सवालों से तो आप पूरा शो ले जाएंगी हमारा, बेहतरीन।
1: और कोई तो नहीं है? वेट,
0: कोई भी नहीं है। हमने आज दाढ़ी बढ़ाई हुई है और आज हम आपको एक विजुअल देते हैं, जितने हमारे सर पे बाल हैं उतनी हमारी दाढ़ी मूंछ के बाल हैं। बड़े दिनों से मैं ये व्यू लेना चाह रहा था कि ये जो सॉल्ट एंड पेपर अगर इंसान के पूरे मुंह पर एक जैसे बाल हों तो वो कैसा लगेगा? और इसके लिए लेकिन मैंने ओवरबोर्ड नहीं गया, अगर मैं ओवरबोर्ड जाना तब होता कि मैं अपनी जो ये जो नहीं होते आईब्राउज ये भी छोटे करा लेता। मैंने कहा इसको रहने देते हैं, बाकी चीजों को करके देखते हैं कैसे लगेंगे।
1: ठीक है लाला, ये तो फिर हम भी देखेंगे।
0: ये नहीं देख पाएंगे आप इंशाल्लाह। जब तक चीज आपकी विजुअल के हिसाब से एस्थेटिक्स के हिसाब से ठीक नहीं होती हम नहीं पेश करेंगे। क्योंकि आप अपना आप मुझे बताएं, आप जब केक बनाती हैं तो किसी को आधा अधूरा बना हुआ केक पेश करती हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो लोग आंख भाती चीज होनी चाहिए। जब पूरा बन जाएगा उसके ऊपर तह लग जाएगी, उसके ऊपर जो भी नोक पलक संवार ली जाएगी, फिर आप उसको पेश करेंगे अपने महबूब लोगों को ना। ऐसे ही होता है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दो चीजें, एक उन लोगों की रिस्पेक्ट जो आप करते हैं उनको बुरा ना लगे, लगे कि उनको रिस्पेक्ट फील हो कि इतनी मेहनत की गई है, और दूसरा चीज आपकी क्रिएटिविटी है, इसको आप बेस्ट फॉर्म में पेश करना चाहते हैं। इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो इससे आपकी वैनिटी जो है वो भी गायब हो जाती है। सोचता है आदमी इस तरह, ये वैनिटी के लिए नहीं है कि मैं अच्छा लगूं, मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही लग सकता हूं। यही हमारी नाक है, यही छोटी छोटी हमारी आंखें, यही मीडियम से हमारे सख्त किस्म के कान हैं। ये मैंने किसी को नहीं कभी बताया, मेरे कान इतने सख्त हैं कान से बंदा मार सकता हूं मैं।
1: अच्छा,
0: ये मुझे भी अभी ख्याल आया जब मैं देख रहा स्क्रीन के ऊपर, तो क्योंकि मेरा दोस्त जब हम लड़ते थे ना आपस में तो कभी कभी ना सर मारते थे या नाक मारते, तो मुझे कहता था जालिम तू नाक से बंदा मार सकता है।
1: अल्लाह,
0: तो मुझे से आजाद
1: लाला माशाल्लाह से आप बहुत, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो आप किसी की पिक्चर देख के बता सकते हैं कि ये बंदा
0: हाँ जी
1: सीधा है, ये चालाक है?
0: बहुत दफा बताया मैंने, और अगर आवाज सुन लूं कोई एक आध दो मिनट का क्लिप सुन लूं तो भी बहुत कुछ मैं बताता हूं लोगों के बारे में, और उसके अलावा अगर मैं मिल लूं आपसे और काम कर लूं तो फिर तो मैं आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे बता सकता हूं।
1: तो यानी पिक्चर से आप?
0: हाँ जी, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो ऐसा ही होता है। और कैसे पता है आपको, कैसे इतनी सी बात से आपने पता लगा ली? फोटो देख के आपने इस बंदी का बता दिया कि इनका माइंडसेट कैसा होना है या मिजाज कैसा होना है। तो मैं हंस पड़ता हूँ, मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता बाय द वे। ये कोई कमाल नहीं है और ये कोई नेक होने की निशानी या पहुँचे हुए होने की निशानी नहीं है। ये इंट्यूटिव माइंड जो आपका होता है, जो कि साइड ऑफ द ब्रेन होती है, उसमें डायरेक्ट जो पहली सोच आपको आती है, क्योंकि आप उस सोच को चेक नहीं रखते या आप उसके ऊपर नहीं कि मुझको ऐसा पेश करना है या मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। जब आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो आप चीज़ें देख सकते हैं, कोई इंसान भी देख सकता है। अगर वो नहीं देख सकता तो इसका मतलब है वो चाहता है कि वो एक सर्टन तरीके से सामने आए, वो चाहता है कि जी वो उसको इसके बदले कुछ चाहिए या इसके बदले उसको पैसे चाहिए या इसके बदले इज्जत चाहिए, इसके बदले नाम मुकाम चाहिए। आप इन सारे चक्रों से जब बाहर निकलेंगे, फ्री थिंकिंग जब आप करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बताया भी हुआ है ये शो के बाद, किसी शो में आके कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कभी बताना भी चाहेंगे, और बहुत सारे लोगों को मैं मना करता हूँ। आपको पता है मैं जिन लोगों की काउंसलिंग करता हूँ या जिन लोगों को मैं कुछ बातें समझाता हूँ, पहली शर्त ये होती है आप किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह दुश्मनें भी बढ़ जाती हैं उनके, जो जिनकी बाकी लोगों को वो बताते हैं तो वो हम पे वो समझते हैं हमने को पर्सनली ऐसा किया है, तो कुछ ऐसी बातें। तो इसलिए मैं बहुत कम, एक तो मैं लोगों से पर्सनल बात का मशवरा मैं बहुत कम, जब तक मैं किसी को जानूँ ना या इस काबिल ना समझूँ या मैं उसका हक ना समझूं कि मुझे बताना चाहिए इनकी ज़िंदगी आसान होगी, तब तक मैं पर्सनल किसी के बात में बताता नहीं हूं। लोगों से मैं पूछता हूं, आप ये साइकोलॉजिस्ट तो नॉर्मली सुन लेते हैं बैठ के, आपने गुबार निकाला तो आप चले गए, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को सिचुएशंस देता हूं, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आप क्या करेंगे, मैं उनको सोचने के तरीके बताता हूं। सोचते भी वो खुद हैं फिर, और उसके बाद डिसीजन भी वो खुद लेते हैं। ये और बात है कि जो कुछ भी वो सोच के आए होते हैं जाते हुए, बिल्कुल वो चीज़ें उनके जहन में नहीं होती, क्योंकि ये सोचने का तरीका उन्होंने नहीं किया होता। फिगर आउट।
1: सही आजाद लाला। तो आजाद लाला, अभी जो आप ये बात कर रहे थे इससे मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, वो ये कि आजाद लाला वेरी,
0: लेकिन एक बात, एक पॉइंट बहुत अच्छा अभी आया। कोई इंसान भी किसी की तस्वीर को देख के, आवाज को सुन के, या उसके साथ छोटी मोटी डील करके, छोटी मोटी डील की बात कर।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर radio station at www.radioazad.us. Iske alawa agar aap poems sunna chahte hain, nazmein sunna chahte hain to aap SoundCloud pe ja sakte hain, MixCloud pe. Specially batana zaruri hai un tamam logon ko jo shows ki recording ya apne favorite shows ki recording sunna chahte hain apne time ke upar, aap log MixCloud pe jaake Radio Azad ko search kijiye aur hamare shows wahan pe aap unki recording sun sakte hain. Aur ye to aapko maloom hi hai ki jin logon ke paas iPhone app hai, Android hai, BlackBerry hai, smartphones hain, wo log hamare iPhone app ke through sun sakte hain jo hai Radio Azad. Dua mein yaad rakhiyega, zindagi ri to phir milenge aur sabse important baat, logon ke liye aasaniyan paida kijiyega, Rab aapke liye aasani paida karega. Khuda hafiz.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
4: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
4: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
5: This is the national and international news today, Wednesday, 15th of July for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks. Midnight social media curfew proposed for UK teens aged 16 and 17, but they can opt out. Keir Starmer to face final Prime Minister's questions as Prime Minister. 7 Britons among those killed in Spain wildfires. Police say Anne Widcombe killed in a targeted attack as motive investigated. Hosepipe ban enforced for millions. Reaction as Spain stunned favourites France to reach final. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
6: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. अमरीकी प्रेसिडेंट ने ईरान को एक मरतबा फिर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। बरतानिया में लेबर पार्टी की नई क़यादत के लिए नामजदगियों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों के लिए जायदाद खरीदने के कवायद जारी कर दिए। सामीन ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
4: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.

0: What if one night could change a young person's life?
1: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9:30 p.m. at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
0: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
1: Get your tickets today on Eventbrite.
0: Celebrating the next generation.
1: Inspiring the generation after.
0: We'll see you there.
2: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
3: Oh, Hillary,
4: I was going to use newspaper display advertising.
5: But
4: it costs £10 per inch.
5: And that's too expensive.
4: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
5: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
6: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
8: ये भी बहुत अहम है, मन के बजाय अल्लाहीना का इस्तेमाल. बस किसी का रास्ता दिखा दें. मन होता है कोई भी, अल्लाहीना होता है खास वो लोग. यानी अल्लाह ताला ने बहुत खवास, खवासुल खवास का जिक्र कुरान में किया है. कई लाखों अंबिया थे, उनमें से बहुत कम अंबिया का जिक्र किया है. और उन अंबिया की कई लंबी लंबी जिंदगियां थी, जैसे 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को लेकर कुरान ने अपने अंदर दर्ज किया है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 125 साल से ज़्यादा उम्र थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ मिनट कुरान में डाले गए हैं. कुछ मिनट, पूरी ज़िंदगी नहीं. देखिए, अगर मैं एक दिन की रिकॉर्डिंग, जो डायरेक्टर्स होने, एक दिन की रिकॉर्डिंग, इसका अगर आप ट्रांसक्रिप्ट बनाए ना, तो 60, 70, 80, 100 सफ़े बन जाएं. पता है ना आपको? तो आप अंदाज़ा करो, एक दिन की अगर अहादीस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 24 घंटे की, क्या बातें की, किससे बात की, क्या हिदायत की, तो कुरान से, कुरान के बकरा से बड़े आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए एक दिन का. 150 साल उनकी ज़िंदगी, और उसमें से कुछ वाक़यात अल्लाह ताला ने चुने, कुछ ख़ास लोग चुने, और उन ख़ास लोगों की कुछ ख़ास लम्हात चुने, जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने इस किताब में डाली. तो जब हम अल्लज़ीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ख़ास ख़वासुल ख़वास, यानी ख़ास से भी ख़ास से भी ख़ास, इनको आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते. जिन लोगों को अल्लाह ने ख़ुद चुना अपने कलाम में डालने के लिए, इनका एक अलग मकाम है, और बाकी सब अलग मकाम है. ये अहम क्यों है? क्योंकि मज़हबी साइकोलॉजी में, मज़हबी नफ्सियात में कहानियों की बहुत अहमियत होती है, आपको पता है ना. और जिसने भी कोई दीन सिखाना हो, वो क्या सिखा रहा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कहानी. बाइबल की अक्सरियत क्या है? कहानी है. लेकिन होता क्या है? कुछ कहानियाँ हम

एक ही दर्जे का कैसा हो सकता, कैसे हो सकता है? किसी मुअर्रिख ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की और अल्लाह ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की, कभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं। लेकिन हमारे नैरेटिव में जब आप दीन के बारे में बात करते हैं, जब आप दीन के बारे में सीखते हैं, बचपन से आप दीन के बारे में सुनते आ रहे हो, आपने कई वाकयात सुने हैं और उसमें से बहुत सारे वाकयात कुरान से हैं और बहुत सारे वाकयात कुरान से नहीं हैं, लेकिन जब वो बताए जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बस एक ही दर्जे की बात हो रही है। समझ रहे बात? तो जब अल्लज़ीना में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो कुरान में बात मज़कूर है ना, उसका एक ख़ास मकाम है। ये कोई ऐसे ही कोई शख्सियात नहीं है, ये ऐसे ही कोई लोग नहीं है। सिरात मन अनअमत अलैहिम, नहीं नहीं नहीं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अच्छा, आगे ये भी, अभी हमने मांगा क्या था अल्लाह ताला से इससे पहले? इहदिना, राइट, हिदायत दें। तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें। उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरातल्लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हिदायत जो है, ये अल्लाह ताला ने तो हमने तो मांग ली, लेकिन अब हमें पता चला कि असल हिदायत सिर्फ वही फॉलो कर सकता है जिसको आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आए, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आए। सिर्फ हिदायत मिल जाना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी भी आनी ज़रूरी है। ये तोहफा बहुत लाजमी है हम सब के लिए। ओके, ये हो चुका। ओके, नाउ आई गेट टू द फन पार्ट। जाहिर करने की जगह पर खफी रखना, कहते हैं अरबी में, कहते हैं अल इदमार फी मकाम इज़हार। किसी का नाम नहीं लिया गया, जिन लोगों पर इनाम किया, जिन लोगों पर इनाम किया, बताया है कौन लोग हैं? ये नहीं बताया ना। यानी ये मकाम ऐसा था कि शायद बताने का मकाम था लेकिन जानबूझकर छुपाया गया है, जाहिर करने का मकाम था लेकिन खफी रखा गया। बात समझ में आई? खफी रखने से क्या होता है? अगर मैं आपको ना बताऊं, जहन में क्या सवाल आता है? ये लोग कौन है, कौन लोग हैं ये? ये सवाल जहन में लाना जरूरी था, क्योंकि जब ये सवाल जहन में आएगा तो इंसान इसकी तलाश में निकलेगा। जब इसकी तलाश में निकलेगा तो उसको हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर ही हमें सवाल दिल में डाल रहे हैं हमारे अनअमता अलैहिम के ज़रिए। ये कौन लोग हैं, क्या किया था, कैसे आसानी आई थी? सिर्फ नाम काफ़ी नहीं रहा। फिर दूसरी बात, अगर कहा होता सिरात इब्राहिम, मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता, आपको मालूम है इससे पहले, कुरान के आने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशहूर थे, आपको इस बात का इल्म है, होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर थे, ईसाई सारे उनको जानते थे, यहूदी जानते थे, अरब के कुरैश जानते थे, वो कहते थे इब्राहिम का घर है, इब्राहिम इस्माइल का घर है, वो भी मानते थे। लेकिन हर एक के दिमाग में एक और इब्राहिम था। यहूदियों का इब्राहिम कोई और, ईसाइयों का इब्राहिम कोई और मुशरिकीन अरब का इब्राहिम कोई और। अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात को पढ़ें बाइबल के अंदर, आपको नहीं लगेगा कि आप इब्राहिम के बारे में पढ़ रहे हो, वो कोई और ही शख्स है। अगर यहाँ इब्राहिम कहा होता, जिसके जहन में अभी तक किसका कॉन्सेप्ट है, पुरानी इब्राहिम के किस्से का, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से की, यहाँ उस बात को छुपाया गया क्योंकि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जैसे कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में नाम तो रह गया लेकिन बाकी सारी हकीकतें भुला दी गईं। अस्हाबुल कहफ का किस्सा आप जानते हैं, है ना? अस्हाबुल कहफ कुरान के आने से 150 या 125 साल पहले बहुत मशहूर रहे थे, बहुत ज़्यादा मशहूर। पता किस लिए मशहूर थे? ईसाइत के ज़रिए। ईसाई उनको पादरी मानते थे, उनके नाम पर पूरा कनीसा बना था, पूरा चर्च बना था। उस चर्च में हर साल फेस्टिवल ऑफ द 7 सेंट्स यानी 7 पीरों की ईद मनाई जाती थी। पूरी पेंटिंग बनी हुई थी, 7 लोग गार के अंदर सो रहे हैं कुत्ते के साथ,

0: और इनको कहा गया कि ये बाहर निकले और उन्होंने सबको ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की दावत दी, इसलिए बड़े माने गए थे ये अस्हाबुल कहफ। अस्हाबुल कहफ के बारे में कुरान में पूछा गया कि नहीं, और जब कुरान ने इस बात का जवाब दिया तो वाकई जो किस्सा हुआ था वो बयान किया कि नहीं। अगर अस्हाबुल कहफ शुरू में कहा होता तो किसी के जहन में असली किस्सा होता या वो झूठा किस्सा होता? झूठा किस्सा, इब्राहिम का झूठा किस्सा, मूसा का झूठा किस्सा, ईसा का झूठा किस्सा, झूठे किस्से तो सारे मौजूद थे, असली किस्सा तो कुरान ने आके बताया। इसीलिए यहाँ पर बात को छुपाया गया है, और जब जाहिर किया गया है तो यहाँ तक के बनी इसराइल के और ईसाइयों के उलमा भी हैरान रह गए। हम तकरीबन इंतहा तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो असल मौजज़ा है ना सूरह फातिहा का, वो आखिर में आ रहा है, गैर المغضوب علیہم ولا الضالین, गज़ब का मुस्तहिक होने वाले और गुमराह में फ़र्क। इसी तरह तर्जुमा करते हैं उर्दू में कैसे करते हैं, गैर المغضوب علیہم, आप तर्जुमा क्या होता है? ना उनका जो जिस पर अल्लाह ने गज़ब किया, ये आम तर्जुमा है हाँ, और ना जो भटके हुए थे, ठीक है। अच्छा, जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया, अल्लाह का लफ्ज़ यहाँ है नहीं, المغضوب علیہم, गज़ब जिस पर किया जाए उसको مغضوب علیہ ही कहते हैं, مغضوب علیہ जिस पर गज़ब किया जाए। बाल कहते हैं जो रास्ते से गुम जाए, बाल। अगर मैं यहाँ आ रहा था, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, GPS ख़राब हो गया और मैं इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा हूँ, मैं क्या हूँ? बाल, बाल। अच्छा, मग़दूब अलैह है जिस पर गुस्सा किया जाए, पहले उसको समझ लें। अगर मैं कहूँ इस लड़के को स्कूल में मारा गया, ओके, या इस लड़के के साथ ज़्यादती की गई, उसको मारा गया रिसेस में और मारा गया ऐसे, मैंने क्या वाज़े किया कि एक ने मारा या बहुत सारों ने मारा? वाज़े नहीं है। मैंने वाज़े किया कि और बच्चों ने मारा या टीचर ने मारा? ये भी वाज़े नहीं है। इतना वाज़े है कि मारा गया और कुछ वाज़े नहीं है। हो सकता है एक हो सकता है बहुत सारे हो सकता है टीचर हो सकता है स्टूडेंट्स हो, मुमकिन है ना। मग़दूब अलैहिम में जिन पर गुस्सा किया गया, क्या वाज़े नहीं है? किसका गुस्सा? आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अल्लाह का गुस्सा, अहले ईमान का गुस्सा, सारे फरिश्तों का गुस्सा, बल्कि उनके अपने फॉलोअर्स का गुस्सा, क़यामत के दिन वो भी गुस्सा करेंगे जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया, उनका गुस्सा। अगर कोई एक गुस्सा होता तो जिक्र कर दिया होता, लेकिन गुस्सा इतनी मुख्तलिफ सिमतों से आ रहा है कि लोगों के लिए ताबीर क्या की गई है, जिन पर गुस्सा किया गया। दूसरी बात, यहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र है कि नहीं? कुछ उलमा ने इससे ये बात भी इशारा निकाला है कि अल्लाह ताला को इन पर इतना गुस्सा है कि अल्लाह ताला ने अपना जिक्र भी इनके साथ नहीं किया। गैर अल्लज़ीना ग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, ना गैर अल-मग़दूबी अलैहिम, अल्लाह ताला ने अपने गुस्से में अपने आप को इनसे दूर कर लिया, जिक्र भी नहीं किया इनके साथ अपना। लेकिन फिर भी ये बात वाज़ेह नहीं होती कि जिस पर गुस्सा किया जाए और जो भटका हुआ हो, गुमराह हो, उसमें फ़र्क क्या है? मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। मेरे दो जो बेटे थे जब छोटे थे, इमाद बड़ा और वलीद छोटा, तो इमाद से मैंने कहा बेटा ये कुकीज़ जो है ना ये नहीं खाना, मैं ज़रा जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। वलीद ऊपर था, इमाद किचन में था, मैंने इमाद से कहा बेटा तुम कुकीज़ नहीं खाना और वलीद भी नहीं खाएगा, अच्छा मैं भी 5 मिनट में आता हूँ। अच्छा मैं गया, 5 मिनट वापस आया, दोनों बैठे खा रहे हैं। गुस्सा मुझे किस पे आएगा, वलीद पे या इमाद पे? क्यों? क्योंकि वलीद भटका हुआ है लेकिन इमाद गुस्से का मुस्तहिक है। क्यों? क्योंकि इमाद के पास इल्म था। अगर किसी को पता हो और पता होने के बावजूद गलत हरकत करे तो उस पर क्या आता है? गुस्सा आता है। एक स्टूडेंट है जो उसने क्लास मिस कर दी, एग्जाम से एक दिन पहले बीमार हो गया, क्लास मिस कर दी, बाकी स्टूडेंट आ गए क्लास में। मैंने बाकी स्टूडेंट से कहा देखो कल फाइनल एग्जाम है, ये लो कॉपी फाइनल एग्जाम की, ये लो कॉपी सारे जवाबों की, 100 लेने हैं कल सबने। उसके बावजूद दो लोग फेल हो गए, एक जो वहाँ था और एक जो बीमार था। गुस्सा किस पे आएगा मुझे? जो बीमार था उसके साथ मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो भटका हुआ था। और जो था वहां पे, यार तुझे तो मैंने जवाब भी दे दिए, सवाल भी दे दिए, जवाब भी दे दिए, तुम कैसे फेल हो गए? तुम्हारे पास क्या बहाना है, क्या उजर है तुम्हारे पास? जिसके पास कोई उजर ही नहीं रहा उस पर क्या होगा गुस्सा? गैरिल मग़दूबी अलैहिम से उन लोगों की बात की तरफ इशारा किया जा रहा है जिनके पास इल्म भी हो, वो जानते भी हों क्या सही है क्या गलत है, वो जानते भी हों सीधा रास्ता क्या है, वो जानते भी हों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जानने के बावजूद फिर भी करते रहते हैं। इल्म है, अमल नहीं है। इल्म के बावजूद अमल ना होना, अल मग़दूबी अलैहिम। अब समझ में आएगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मिसाल यहूद से क्यों दी थी, क्योंकि यहूद के बारे में कुरान ने बार बार क्या कहा है, इनके पास बहुत इल्म है, इल्म है। लेकिन यहां यहूद क्यों नहीं कहा? यहूदी कहते थे गैरिल यहूद वलन नसारा, क्योंकि ये असल में यहूद उसकी मिसाल है, मिसाल है कुरानी यहूद, तमाम यहूद नहीं, कुरानी। और कुरान में अच्छे यहूद का भी जिक्र है, कुरान में जो मिसाल दी जाती है उन लोगों की जो जानते बूझते गलत करते हैं, तब उनकी मिसाल यहूद की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई मुसलमान जानने के बावजूद गलत हरकत करे? क्या फिर यह मुमकिन है कि वो अल मग़दूबी अलैहिम में शामिल हो सकता है? और अगर यह वाकई यहूद होते तो आज दुआ यह होती, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें यहूदी ना बना देना। उसकी कोई तुक बनती है? कुछ हंस नहीं बनती। यहूदी तो वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो जेनेटिक रिलीजन है, उसमें तो अगर आपकी नस्ल नहीं चली आ रही तो आप उसमें शामिल भी नहीं हो सकते, और उसमें शामिल होना कौन चाहता है? तो अगर आप दुआ मांगोगे तो दुआ ऐसी चीज से मांगोगे जिसका खतरा आपको है, उनके रास्ते यानी ऐसे रास्ते पर ना भटकूं मैं जिसमें मैं जानता भी हूं और फिर भी गलत करूं। अल मग़दूबी अलैहिम। और दूसरी तरफ एक और बुरा रास्ता भी है, वो क्या है? वल अद्दालीन। अद्दालीन क्या है? भटके हुए, यानी मेरी नीयत साफ है, मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं सही काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? इल्म नहीं है। एक है इल्म तो है, अमल नहीं है। इल्म है, अमल गलत है। दूसरे का अमल गलत है क्योंकि इल्म नहीं है। दोनों तरफ से मुझे खतरा है। अब हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं मैं कोई तुम में से कोई होगा लड़का कहेगा चलो यार वो एक लेक्चर है चलते हैं, क्या बात हो रही है कुरान के बारे में? नहीं नहीं नहीं एक दफ़ा पता चल गया फिर जिम्मेदारी हो जाती है, बेहतर है कि मैं पता ना ही करूँ। इल्म ना हो तो फिर मुझे भटका ही रहने दो, कम से कम एक्सक्यूज तो है ना, क्योंकि एक दफ़ा इल्म आ गया तो मग़दूब अलैहिम हो जाऊंगा, मैं दालीन ही खुश हूं। फातिहा में कहा है ना तुम बचोगे अल मग़दूब अलैहिम होने से, ना बचोगे दालीन होने से। ये जहन में बात होती है, अगर ना सीखो तो बच जाऊंगा दालीन। नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं बताओ, मुझे नहीं बताओ। और हमारे यहां तो अब बालीन का एक कल्चर बन चुका है। अब तो ये कह दिया आप कुरान सीख ही नहीं सकते, आपको आलिम हो क्या? आप सीखोगे कुरान? कुरान उलमा के लिए होता है, खुद सीखोगे तो क्या होगा, भटक जाओगे। फातिहा नहीं पढ़ी, वाकई नहीं पढ़ी। जो कुरान जिन्नात सुन के गुजर रहे थे, सुन के मुसलमान हो गए, वो तुम नहीं सुन सकते, तुम गुमराह हो जाओगे। जो कुरान ईसाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरात सुन के मुसलमान हो गए, जो सारी जिंदगी मुशरिक उमर बिन खत्ताब थे, कुरान को काबे के नजदीक सुन के वो दिल हिल गया उनका, तुम नहीं सुन, तुम गुमराह हो जाओगे। उनके लिए हिदायत थी, वो तुम्हारे लिए थोड़ी, वो तो ग्रेजुएट थे ना किसी आलमी इंस्टीट्यूट से। क्या नॉनसेंस है ये कैसे तमाम इंसानियत के लिए पैगाम हो सकता है अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते? कुरान का तदब्बुर, कुरान का सही फहम, उसके लिए इल्मी गौता लगाना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। इसके लिए उलमा की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि कुरान को कोई पढ़ ही नहीं सकता किसी आलिम बने बगैर, ज्यादती है, कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पैगाम तमाम इंसानियत के लिए आया था, किसी मदरसे के ग्रेजुएट्स के लिए नहीं आया था। ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا؟ گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا، ایکسیسیبل بنانا، ایکسکلوسیو نہیں بنانا. یو نو، تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف علم اور امر، اور امر علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے ناؤ ایک اور بات، فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ. فعل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے؟ اور اسم کب ہوتا ہے؟
1: ہاں،
0: جن پر انعام کیا، ان کا راستہ جن پر انعام کیا، فعل ہے یا اسم ہے؟ اور کس صیغے میں ہے؟
1: ماضی میں، جن پر انعام کیا.
0: لیکن غضب کے مستحق، غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے؟
1: اسم ہے، دونوں
0: دونوں اسم ہے. اسم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہ اس کا ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے.
1: انعمت علیہم صرف ماضی میں ہے،
0: لیکن المغضوب علیہم ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی ہوں گے.
1: اسی طرح الضالین ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور
0: مستقبل میں بھی ہوں گے. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، اسی لیے پوچھا گیا ہے. اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ اس میرے اندر دو خطرات ہیں، یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا، یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے، یہ بھی عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے، غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے، کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین، اور لفظ عربی کا ضالین ہے. آپ خود گمراہ ہوئے ہو، آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی، آپ نے خود ہی چوائس کی، آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے اوکے، ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، پھر یہ توازن کی طرف آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے، عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا، نہ میں نے کھانا کھانا ہے، نہ میں نے پانی پینا ہے، نہ اور نہ، نہ تو میں یہ کروں گا، نہ میں وہ کروں گا. تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں نائدر ول آئی ڈرنک نور ول آئی ایٹ، نائدر نور، رائٹ، نائدر نور. اور انگلش اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ. عربی میں کہتے ہیں لا ولا، لا ہذا ولا ہذا، یا کہتے ہیں ما ولا، ما ہذا ولا ہذا، یا کہتے ہیں لیسا ولا، لیسا ہذا ولا ہذا، یا کہتے ہیں غیر و او، غیر ہذا او ہذا. مختلف سٹائلز ہیں، لا ولا، ما ولا، لیسا ولا، غیر و او. فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و لط، غیر ولا، دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پورے یعنی پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا، کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا، اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. یہاں ان کے یہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کلام ہے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا، یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے، میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا، میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। शुरू हो जाए सुबह।
1: आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि मेरे बच्चे का कलाम नहीं है, होगा कि नहीं? मेरे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। वो रात को अब्राहम लिंकन की स्पीच याद करके सुबह वो नाश्ते की टेबल में बैठ के अब्राहम लिंकन की स्पीच बोलनी शुरू कर दें। मुझे पता होगा कि इसका कलाम नहीं है, पता होगा ना ये, क्योंकि कहीं और से तुमने याद किए तुम्हारी स्पीच। मुझे तुम्हारा कलाम पता है, तुम्हारी वोकैबुलरी मुझे पता है, जिस तरीके से तुम बोलते हो, जिस तरीके से तुम जुमले को जोड़ते हो, उस सबका मुझे इल्म है। और ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है, ऐसा ही है ना? कभी कभी आपका कोई दोस्त होता है, वो टेक्स्ट मैसेज भेज रहा होता है, तो उसका एक और दोस्त, खैर मैं भेजता हूँ, और आप फौरन कहते ये तुमने नहीं लिखा था, तुम ऐसे नहीं लिखते होते। पता चल जाता है कि नहीं? बात ये थी कि जो हदीस में बात हो रही है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने का एक तरीका है। अगर हजारों लाखों हदीस जमा है तो उसका एक पैटर्न है। और कुरान भी किसकी जबान से जारी हो रहा है? उसी शख्स की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक लिंग्विस्टिक स्टडी की थी कि कुरान की जबान और हदीस की जबान में क्या फ़र्क है, क्या वाकई को फ़र्क है, और स्पीच पैटर्न्स क्या हैं। तो उसमें उन्होंने तकरीबन 300 मिसालें निकाली कि कुरान की जो स्पीच पैटर्न है उस वो हदीस, दो मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं। वाजे वेस्टर्न एकेडमिक, ये कोई इस्लामी किताब नहीं थी, वेस्टर्न एकेडमिक पीएचडी थी इस तरह के, जो दो स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। और फिर ये जाहिर किया कि जो कुरान का जो स्पीकर है उसको वो अल्लाह थोड़ी कहेंगे, वो अल्लाह मानते नहीं हैं, एकेडमिक किताब थी। कुरान का जो स्पीकर है वो किसी और अरबी के स्टाइल से मैच नहीं करता। अरबी की कोई और मिसाल नहीं है जो जिस तरीके से कुरान बात कर रहा है। और उसकी पहली मिसाल क्या है? गैर व ला। गैर व ला कहीं भी अरबी में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय कुरान के। सुभान अल्लाह। गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, इतनी छोटी सी चीज, अगर यहां कहा होता लल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, बात फिर भी समझ में आ जाती। लैसल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, फिर भी बात समझ में आ जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही से एक मुनफरद उसलूब चुना जिससे यह बात वाज़ेह की। ओके,
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
0: मुझे सेमिनार के लिए देर हो रही थी, मैं इस्त्री कर रहा था अपने कपड़े, तो मुझे कॉल की, दोस्त मुझे कॉलिंग लेके जा रहा था। We're getting late for the seminar. I said, just let me just finish ironing my pants. मुझे नहीं पता था कि पैंट का लफ्ज अमेरिका में पतलून के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लैंड में अंडरवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते यू डू दैट इन अमेरिका? I was like, yeah, yeah, we do that in America. लहजे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अरब ममालिक में, हर मुल्क में, बल्कि हर गांव में उसका अपना क्या है, लहजा है। जैसे उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान, पंजाबी के भी मुख्तलिफ लहजात हैं।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. This is Aisha Fukushima. Keep listening to Inspire FM at 105.1 FM.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Gems and jewels. wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. As for the ship, it belonged to poor people working in the sea, so I wished to make a defective damage in it, as there was a king after them who seized every ship by force.
9: I sold the timber for more than the amount that was estimated by your experts, and yet the land remains for the orphans. So now, pay a price that you see fit to pay. The caliph said, I am the first to be led to the truth, and may Allah reward you well for us and for our nation.
10: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now, or visit islamichelp.org.uk.
12: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
13: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
14: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
13: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Last time on Akhri Mojza.
1: Quran ka jo speaker hai, wo kisi aur Arabi ke style se match nahi karta. Arabi ki koi aur misal nahi hai jo jis tarike se Quran baat kar raha hai. Aur uski pehli misal kya hai? Ghair wa la. Ghair wa la kahin bhi Arabi mein kabhi bhi istemal nahi hua siwaye Quran ke. Subhanallah. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کہا ہوتا ہے لَلْ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لَيْسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے okay.

0: ऑलराइट, अब तवाज़ुन की बात करते हैं। इस सूरत में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस किया गया है, उसकी कुछ मिसालें देख लें। एक तरफ थी तारीफ, दूसरी तरफ था शुक्र, जो अलग अलग चीज़ें हैं उन दोनों को एक साथ बैलेंस करके हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अर रहमान में तीन बातें थी और रहीम में दो बातें थी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसको बैलेंस किया गया। इसी तरह दुनिया की बात की गई शुरू में रब्बिल आलमीन तक, फिर उसके बाद आखिरत की बात आ गई मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह शुरू की आयात में फ़र्द के बारे में बात हो रही थी और आखिरी आयात में आप देखें जमा इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदीना नअबुदु अलमग़दूबी अलैहिम जमा अद्दालीन जमा, माशरे की बात हो रही है। तो एक बैलेंस आ गया फ़र्द के और माशरे के दरमियान। इसी तरह इबादत करना और मदद तलब करना, दोनों के दरमियान एक बैलेंस। हम अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करें, राइट। फिर आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत, इससे क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हमें, एक तो हमने पहले कह दिया सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ सकता है, लेकिन उस हिदायत में एक ज़मीनी पहलू भी क्या है, माजी की तरफ तारीख में देखना है किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और कौन से लोग हैं जो गज़ब के मुस्तहिक हुए, राइट। तो आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत। इसी तरह हिदायत की वजाहत, एक तो है इनाम, दूसरी तरफ है इन लोग ऐसे बुरे लोगों की तरफ ना हमें ले जाना, हमें इस रास्ते से बचा लेना, बैलेंस बिटवीन मुस्बत और मनफी, ना दोनों के दरमियान। अच्छा, अब पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तीन आयात। इन तीन आयात को मैं कहता हूँ इल्म। इन तीन आयात को मैं क्या कह रहा हूँ? इल्म। क्यों? इसमें आपको किसका इल्म हुआ? अल्लाह ताला का इल्म हुआ इसमें। फिर आप कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब मदद मांगते हैं, हमें हिदायत दें। ये क्या है? अमल है। अब आप अमल करने को तैयार हो। पहला हिस्सा था इल्म, दूसरा हिस्सा क्या है? अमल। अच्छा, अब जब कहा उनका रास्ता जो जिन पर आपने इनाम किया, उन लोगों के पास क्या था? इल्म और अमल दोनों। पहले बात समझ लें, बात शुरू कहाँ हुई थी? इल्म से। दूसरी बात क्या हो रही थी? अमल। फिर जिस ग्रोह की बात हो रही उसके पास क्या था? इल्म और अमल। उसके बाद अलमग़दूबी अलैहिम, उनके पास क्या है? एक्चुअली उनके पास इल्म है बग़ैर अमल के, और अद्दालीन के पास है इल्म बग़ैर अमल के। इल्म, अमल, अमल और इल्म, इल्म बग़ैर अमल, अमल बग़ैर इल्म। अजीब अजीब बैलेंस है इस पूरी सूरत में। अच्छा, उसके बाद ये इसको समझने के लिए ज़रा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। इस्म और फेल की बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, नहीं ये क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ ना, ये मेरे नज़दीक कुरान के बहुत बड़े अजायब में से है, बहुत ही बड़े अजायब में से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ सब्र करना, लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई, कुरान के मेरे नज़दीक एक मौजज़ात में से है ये। इस्म ऐसा होता है जिसमें ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। ये बात पहले कही थी कि नहीं? ओके, इस्म से बनता है जुमला इस्मिया, अरबी में कहते हैं जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के अंदर किस चीज़ की तरफ इशारा होता है? ऐसी चीज़ जिसका ना हाल हो, ना माजी हो, ना मुस्तकबिल हो, उसमें उसकी तरफ कुछ इशारा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फ़ेल है, फ़ेल में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। उससे बनता है क्या जुमला? क्या जुमला? फ़ेलिया। वो एक पूरी ग्रामर का लेसन हो जाएगा, लेकिन आप बुनियादी बात समझ लें। जुमला इस्मिया में असल अहमियत इस्म की होती है, और जुमला फ़ेलिया में असल अहमियत फ़ेल की होती है, ठीक है। ओके, अब एक और बात समझ लें इस्मिया और फ़ेलिया के बारे में। आम तौर पर जुमला फ़ेलिया शुरू होता है फ़ेल से, और जुमला इस्मिया शुरू होता है इस्म से। अच्छा, इस्म में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल, या हमेशगी?
1: अच्छा
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तीन आयत, ये एक जुमला है। आयत तो तीन है लेकिन जुमले कितने हैं? एक, और ये जुमला इस्मिया है। अरबी के एतबार से ये जुमला क्या है? इस्मिया। ये बात याद रखनी है। तीन आयत कितने जुमले हुए? एक, और ये कौन सा जुमला है? इस्मिया। और इस्मिया में क्या होता है? हमेशगी, राइट? अच्छा, अब मैं एक आयत स्किप करके आखिरी आयत के बारे में बता रहा हूँ। आखिरी आयत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये तमाम आयत तो एक से ज़्यादा है लेकिन जुमला एक ही है, एक ही जुमला है, हमें हिदायत दें। ये है जुमला फ़िलिया। सूरत का शुरू हुआ है जुमला इस्मिया, मुतअद्दिद आयात एक जुमला और वो जुमला इस्मिया। सूरत की इंतहा है मुतअद्दिद आयात लेकिन एक जुमला, और कौन सा जुमला? जुमला फ़िलिया। अच्छा, एक आयत रह गई, कौन सी आयत रह गई? इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अच्छा, ये अजीब आयत है, ये है जुमला फ़िलिया, ये कौन सी है? जुमला फ़िलिया, लेकिन शुरू इसम से हो रही है, इयाका इसम है, यानी है तो फ़िलिया लेकिन इसमें इस्मिया के असरात हैं। ये दोनों का इस तरह समझ लें, ये दोनों का एक मिक्सचर है, ठीक है? अच्छा, मैं ये सारी बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? अब बात समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन किस किस्म का जुमला था? अब आप मुझे बताओ। हाँ, इस्मिया में क्या होता है? और ये हिस्सा अल्लाह ताला के बारे में है तो उसके लिए हमेशगी होनी चाहिए। आखिरी हिस्सा क्या था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये किसके बारे में है? इंसान के बारे में है। कौन सा उसलूब इस्तेमाल हुआ? जुमला क्या और फ़िलिया क्या होता है? आर्जी होता है, टेम्पररी होता है, वो हमारे लिए मुनासिब है। दरमियानी आयात क्या है? हम आपकी इबादत करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और हम सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। ये है एक अग्रीमेंट मेरे और मेरे रब के दरमियान। तो इसमें है तो ये फ़िलिया लेकिन इसमें क्या है? इस्मिया भी शामिल है, क्योंकि जो हिस्सा मेरे और मेरे रब के दरमियान है उसमें इस्मिया के भी असरात आ गए, फ़िलिया के भी असरात आ गए। अजीब अजीब। अभी हदीस कुदसी समझें। हदीस कुदसी में अल्लाह कहते हैं, रसूल से फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब पहली तीन आयत पढ़ी जाती है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरे बंदे ने मेरी सना की। लेकिन दरमियानी आयत के बारे में पता क्या कहते हैं? हाज़ा मा बैनी व बैना अब्दी वली अब्दी मा सअल। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना लिंग्विस्टिक्स थी, ना ग्रामर स्टडीज़ थी, ये सारी चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं, बल्कि अरबों के लिए ज़बान मादरी ज़बान थी, वो ये चीज़ें पढ़ते नहीं थे। ये तो बाद में डेवलप हुई है क्योंकि गैर अरब ने आकर कहा ये ज़बान तो बहुत ही गहरी है, इसके लिए हम पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये सारे कवायद नहू सर्फ बलागा, ये सारी चीज़ें गैर अरब ने डेवलप की क्योंकि उनको अरबी पढ़ने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। तो अहले फ़ारस ने और लोगों ने डेवलप, सीबा वे अरबी ग्रामर के सबसे बड़े कातिब मुअल्लिफ हैं, वो गैर अरब हैं। ज़मख़शरी की तफसीर, जो कि अरबी बलागत के एतबार से कुरान की सबसे अहम तफसीर मानी जाती है, वो गैर अरब है। तो असल में जो कुरान पर काम हुआ है, ख़ासकर कुरान की ज़बान पर जो काम हुआ है ना, वो गैर अरब ने ज़्यादा किया है, क्योंकि अरबों के लिए तो ये एक उनकी नेचुरल सी बात थी उनके लिए। और उनकी दूसरी बात यह, उनकी तारीख ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ वाली, इल्म की उनकी उनका तमद्दुन इल्म वाला नहीं है, वो तो बदू लोग थे। जब इस्लाम फैला है तो वो ऐसी सोसाइटीज़ में फैला है जिनकी इल्मी तारीख है, उनके यहाँ ग्रामर है, फ़लसफ़ा है, उनके यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं। अब जब वहाँ इस्लाम फैला तो उन्होंने जो उनका पहले ही एक तरीक़ाकार था किताबों का, ग्रामर का, फ़लसफ़े का, उस नुक्ता नज़र से फिर उन्होंने इस्लाम को एनालाइज़ करना शुरू किया और फिर ये सारे उलूम डेवलप हुए हमारी तारीख में। अब एक और तवाज़ुन देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, ये तीन मुख्तलिफ कलर में इस्तेमाल कर रहा हूँ बात वाज़े करने के लिए। अब देखना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ताल्लुक है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन से। क्यों? کیونکہ پہلی آیت میں رب کا ذکر ہے اور اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ عبد. رب اور عبد. رب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رب ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے, وہی تو رشتہ ہے. دوسری آیت میں ہے الرحمن الرحیم, اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے؟ اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم. مالک یوم الدین تیسری آیت ہے. تیسری آیت میں اللہ کا انصاف. انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اے بی سی, اے بی سی. ایسا سسٹمیٹک اس کا سٹرکچر ہے سورت کا. تین باتیں اور ان کا پھر تین باتوں کے ساتھ تناسب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور توازن دیکھیں. ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور میں نے اب بار بار کہا تھا آپ سے جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے, کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی, اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی. اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پہلی تین آیات کا خلاصہ, اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے, اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے, عجیب مکمل بیلنس ہے. پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین, العالمین, اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی. کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں تین طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے. ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم. دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم. تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے. سبحان اللہ, عجیب کلام, عجیب کلام. اچھا یہ پہلی سورت ہے, اور قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ, قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمدو. پہلی سورت کی کا پہلا لفظ پازیٹو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا. اچھا رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین, قل اعوذ بی رب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس, ملک الناس, ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد, عبادت. عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر دو منفی اثرات کا ذکر ہے. دو منفی اثرات. کون سے دو منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر, رائٹ. لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے. یہاں کہا ہے نا نستعین, نعبد. وہاں نعوذ نہیں کہا, وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر دو انفلوئنسز آئیں گے, المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر دو اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے, وہ کیا ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے. یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. یو فنش دی نیگیٹو, ناؤ یو بیک ٹو دی پازیٹو. ایون دی قرآن از بیلنسڈ. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے, عجیب. میری امید تھی کہ آج میں ایکچولی سیمینار شروع کروں گا, ابھی تک میں نے سیمینار شروع نہیں کیا. فاتحہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا, پھر اصل کام کرنا تھا, لیکن وہ ہو نہیں سکا. آج سارا دن فاتحہ میں لگ گیا, لیکن خیر ہے, آئی ایم ناٹ ریگریٹنگ اٹ. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ, انشاء اللہ. لیکن آج آپ کو چھٹی دینے سے پہلے میں ایک کل کے لیے تیاری میں آپ کی کرا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ वो कल के लिए फिर टाइम बचेगा और हम वो सेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर मैं आपको अभी मैं अरबी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो इस सेमिनार में हमें बहुत काम में आएंगी। अरबी असल में तीन तरह की अरबी है। एक है लहजे वाली अरबी, दूसरी है फुसहा अरबी, और तीसरी है लुगत अल अरब। फिर से ये चाहता हूँ कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो मैं फिर से कहता हूँ, पहले वाली कौन सी थी? लहजे वाली। दूसरी क्या है? फुसहा। और तीसरी क्या है? लुगत अल अरब। इन तीन का फ़र्क समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, कुरान के तालिबे इल्म के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है। लहजा क्या है कि हर एक का अपना एक्सेंट है, हर एक का। मिस्री का अपना है, मिस्र में जाऊँगा किसी से पूछूंगा क्या हाल है, कैफल हाल नहीं कहूँगा, इज़ैयक उनका कैफल हाल है। फ़लस्तीन में जाऊँगा किसी फलाही से पूछूंगा चिफ़हालच, वो कैफ़हालक नहीं कहते, चिफ़हालच कहते हैं। ओके, कहीं और खरीद में जाऊँगा श्लोनक, यानी इश्लोनक अयुलोनक श्लोन, यानी लहजे से बहुत ज़बान बदल जाती है। ये इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, कहीं कहीं चाकू होता है, कहीं कहीं काचू होता है ना, इंग्लिश में भी होता है। मेरा एक दोस्त था गायनीज भी समझते हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं। मेरे साथ वो चल रहा था, कहीं एक गाड़ी गुजरी, कहता है अभी गाठी ला रहा, मैंने कहा व्हाट डिड यू से, अभी गाठी ला रहा, व्हाट्स दैट, बिकॉज़ यू डोंट अंडरस्टैंड अभी गाठी ला रहा, लाइक नो एक्सप्लेन, क्या क्या कह रहे हो अभी गाठी ला रहा। Said, I be got a thing like that. Meaning, I have a car like that. Abhi gathi la ra. Wo uska accent hai. Yani, lehje mein farak pad jata hai ki nahi? America mein Pepsi, Coke wagaira ko soda kehte hain. Soda. Kuch aur states mein pop. You want a pop? You want a soda? New York mein soda, Ohio mein pop. Main England gaya. England mein mera dost mujhe kehta hai, "Hey, ustad, you care for a fizzy?" Main bola, "Kya keh raha hai mujhe?" Maine kaha, "I will do no such thing." You care for a fizzy? Phir ajeeb waqia hua mere saath, main England mein tha to मुझे सेमिनार के लिए देर हो रही थी, मैं इस्त्री कर रहा था अपने कपड़े, तो मुझे कॉल की, दोस्त मुझे कॉली लेके जा रहा था, वी गेटिंग लेट फॉर द सेमिनार, आई सेड जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश आयरनिंग माई पैंट्स। मुझे नहीं पता था कि पैंट का लव्स अमेरिका में पतलून के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लैंड में अंडरवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते यू डू दैट इन अमेरिका, उस डू दैट इन अमेरिका। लहजे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अरब ममालिक में, हर मुल्क में, बल्कि हर गांव में उसका अपना क्या है? लहजा है। जैसे उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान, पंजाबी के भी मुख्तलिफ लहजात हैं, राइट? सरदारों की पंजाबी और है, इंडियंस की पंजाबी और है, और जो नॉर्दर्न पंजाबीज़ हैं वो और हैं, और मुख्तलिफ लहजात हैं ना, उसमें वोकैबुलरी भी फ़र्क आता है। इस ज़बान का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर से है लेकिन असल में नहीं है। फिर एक मुश्तरक अरबी ज़बान है जिसको आप समझ लें अखबार की ज़बान, न्यूज़ की ज़बान, यू नो, वो क्या है? अल अरबिया अल फुसहा, ठीक है? जिस तरह हमारी भी एक उर्दू मुश्तरक ज़बान है, वो उर्दू अगर कोई इंडिया में भी बोल रहा हो, पाकिस्तान में भी बोल रहा हो, अगर वो खालिस उर्दू बोल रहा है तो हर एक को समझ आ जाएगी, ठीक है? एक दो ताबीरात का फ़र्क होगा लेकिन 90% बात वही होगी, ठीक है ना? इसी तरह अफ़गानिस्तान में दरी बोली जाती है जो फ़ारसी है, ईरान में भी फ़ारसी बोली जाती है, लेकिन उनके यहाँ फ़र्क है, यानी 19-20 का फ़र्क फिर भी है, लेकिन वो एक मुश्तरका ज़बान है काफ़ी हद तक। तो मुश्तरका जो अरबों की आजकल की ज़बान है उसको कहते हैं अल अरबिया अल फुसहा, बल्कि कहते हैं अल अरबिया अल फुसहा अल मुआसिरा, यानी आजकल की अरबी फुसहा। तो अगर आप आज किसी तफसीर का किताब खोलें, यानी मैं तो कहता हूँ अगर आज से 1000 साल पुरानी भी तफसीर की आप किताब खोलें या 500 साल पुरानी या 100 साल पुरानी, तो आपको क्या मिलेगी? फुसहा,
1: फुसहा।
0: लेकिन अरब की असल जबान इस्लाम के फैलने से पहले थी, ये बहुत जरूरी है समझना। ये क्यों समझना जरूरी है?
2: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: इसी तरह सबसे अजीब जबान आपको दुनिया में मिलेगी मक्के में। मक्के में आपको मिलेगा कोई यमनी बैठा जायनमाज बेच रहा है, कह रहा है 5 रियाल 5 रियाल 5 रियाल। मैं समझा मैं मुझे अरबी इस्तेमाल करने को मिलेगी वहाँ पे। मैं गया किसी से, मैंने पूछा आई नल मतान पाकिस्तानी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कहता है इन तो लिख सीधा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मुख्तलिफ कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक जबान और दूसरी जबान आपस में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है।

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
2: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: होशियार रहे, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।